0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामान चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को

0: श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अराइव्ड इन नीस, France, on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality health care more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest health care program, Ayushman Bharat, which provides top quality health care to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister said that prices of stents and knee implants have become affordable and this has helped many people. Mr. Modi highlighted that medical education has become more accessible to people due more institutions and seats being available. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on this ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को राम राम, राम। आज गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में मैं और यमुना हाजिर हैं फिर से एक बार अपनी बहनों के लिए ढेर सारी बातें और बहुत सारी जानकारी लेकर, जो यमुना हमारी बहनों को अच्छी लगेगी और साथ ही साथ वो हमें अपनी राय भी भेजेंगी जिससे कि हम कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना सकें।
1: ये तो अपनी बहनों पे डिपेंड करता है, उन पे निर्भर करता है कि हमारी बातें उनको कितनी अच्छी लगेंगी रेनू। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जो गृह लक्ष्मी

0: का कार्यक्रम है खास करके ग्रामीण बहनों पर केंद्रित होता है, जो गांव घर में अपनी खेती के साथ साथ अपने घर का सारा काम करती हैं और उनके अंदर हुनर भी बहुत होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी कैसे पंख लगाकर उड़ सकती हैं अपने हुनर के बल पे। तो आज गृह लक्ष्मी कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और कहते हैं रेणु की जो दान पुण्य है उसे करना बहुत ही फलित होता है। तो दान पुण्य में क्या करते हैं लोग, बहुत सी चीजें दान करते हैं, कोई गरीब को कुछ दे दिया, किसी जरूरतमंद को कुछ दे दिया। ऐसे जब जरूरत की बात आती है तो खास करके रक्त की बात करें, किसी की जीवन दान देने की बात करें तो रक्त दान बहुत ही महत्व रखता है।
1: बिल्कुल। और यमुना देखो कहते हैं कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो बहुत बढ़कर होते हैं, और ये बात तुमने भी हमने भी बहुत बार सुनी है कि अगर भाई बहनों में थोड़ा बहुत तनाव हो गया और फिर कोई कार्यक्रम होता है, समारोह होता है, तो सब बोलते हैं भाई खून का रिश्ता है, आखिर आएंगे तो सही। लेकिन देखो इस खून के रिश्ते से भी बड़ा एक रिश्ता होता है रक्तदान का। और जो भी इंसान अपना रक्त किसी को दान करता है ना, तो जीवन भर जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है वह कभी उसे नहीं भूलता।
0: और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेणु की जब हम रक्तदान करते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो होता क्या है, मतलब जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो कभी कभी सबका अलग अलग होता है।
1: बिल्कुल।
0: किसी का ए है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, तो जरूरत पड़ने पर वो चीज मिलती नहीं है। तो होता क्या है कि समय समय पर शिविर लगाया जाता है और शिविर के जरिए जो है उस रक्त को इकट्ठा किया जाता है। तो क्या होता है कि एक दिवस के, जैसे आज दिवस है, बहुत से लोग जाकर के जो है रक्तदान करेंगे, तो जो छोटी छोटी चीजें वो जाकर के रक्तदान ऐसे करते हैं तो वो इकट्ठा करके रखा जाता है। तो जब किसी को जरूरत होती है तो समय पे वो रक्त मिल जाता है, वो अगले का जीवन बच जाता है।
1: बिल्कुल। और यमुना जैसे अभी तुमने हमारी बहनों को बताया कि रक्त जो है अलग अलग समूह का होता है, किसी का ए हो गया, किसी का बी हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, तो हम अपनी बहनों को एक और जानकारी भी दे दें, जैसे कि आज 14 जून है विश्व रक्तदाता दिवस, तो इस जो 14 जून है इसको महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, और इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। वही जो बात अभी तुमने बताई, इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी कि हर मानव जो है उसका रक्त ग्रुप अलग अलग होता है, किसी का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या किसी का ए बी, तो ये जो खोज थी इन्होंने की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और यही कारण है कि इन्हीं के सम्मान में आज यह दिन चुना गया था।
0: कुल मिला के इन्होंने ए बी ओ रक्त प्रणाली का खोज की थी इन्होंने। और खास करके जो योगदान की बात होती है तो होता ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम दान करें, किसी न किसी चीज की दान करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: लेकिन सच कहें बहनों, तो ये जो रक्तदान है एक ऐसा दान है जिसे वो जो पाता है तो वो तो जीवन भर नहीं भूलता, और हम अगर किसी की जान बचाते हैं तो ये मान के चलिए कि जब जान बचाते तो अपने मन में भी एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि पहुंचती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए, और खास करके अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन जब हम किसी गैर के लिए जीते, किसी और के लिए जीते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है।
1: बिल्कुल। और यमुना एक और महत्वपूर्ण बात भी अपनी बहनों को बता दें, पता है कई बार उनके मन में ये बात आ जाती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसीलिए हम ये बता दें कि रक्तदान करने का है वो बहुत ही लाभ होता है। एक तो ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि जब रक्तदान किया जाता है तो हमारे शरीर में नया रक्त बनता है, और रक्तदान के बाद शरीर तेजी से नए रक्त कणों का निर्माण करता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। और यमुना हमारे देश में तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रक्तदान करने में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, उन्होंने 100, 200, 300 बार अपना रक्त जो है वो दान किया है और सभी लोगों को जागरूक भी किया है कि वो भी रक्तदान करें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और एक बात और है कि रक्तदान कौन कर सकता है, इस बारे में भी बताना बहुत जरूरी है, खास करके 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकते हैं, और जो 45 किलोग्राम है या उससे अधिक है वही रक्तदान कर ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है अगर कोई संक्रामक बीमारी है तो बिल्कुल रक्तदान ना करे। तो सच कहें तो अपने लिए तो हम हर कोई जीता है, तो हम किसी और के लिए भी जी करके देखें तो फिर देखिए उसका क्या आनंद होगा।

0: बिल्कुल, अपने लिए जीने की बात जो होती है तो अपने लिए जीते तो सभी हैं, लेकिन जब किसी और के लिए हम जीते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है रेनू।
1: बिल्कुल। और देखो यमुना, ऐसा कहते हैं कि जब एक महिला परिवार में आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पर सोचो क्या हो अगर एक साथ 10 महिलाएं मिलकर साथ बढ़े तो फिर क्या होगा।
0: बिल्कुल, जो 10 सहेलियों की बात कर रही हूँ ना, सच कहूँ 10 सहेलियां जब बैठती हैं तो ये कहा जाता है ना महिलाएं बैठ के बातें करेंगी केवल, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। अगर 5 और 10 महिलाएं एक साथ होती हैं तो एक समूह बना करके वो अपने हुनर को निखार कर बहुत आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसी ही बातें आज हम बताने जा रहे हैं आपको।
1: और देखो आजकल ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो अचार पापड़ तक सीमित है, अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वो डिजिटल सशक्तिकरण भी कर रही हैं और ड्रोन तक खेतों में अब लाए जा रहे हैं। तो हमारी बहनें समझ ही गई होंगी कि आज हम उनकी जो बातचीत कराने जा रहे हैं वो महिला स्वयं सहायता समूह पर ही केंद्रित है। आज की हमारी बातचीत का विषय है महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास, और नीलम त्यागी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये संचालिका हैं गाजियाबाद से, इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी बहन नीलम मदान। तो यमुना, हम अपनी बहन को यही बातचीत सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत सारी योजनाएं हैं कल्याणकारी जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन सफल तभी होंगी अगर हम संगठित होकर उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम त्यागी, जिन्होंने 300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वयं भी उद्यमी हैं और संघर्ष के बल पे अपने इस मुकाम को पाया है। और आज 300 ग्रुप को चलाकर वो कितनी ही

0: सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास, और नीलम त्यागी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये संचालिका हैं गाजियाबाद से, इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी बहन नीलम मदान। तो यमुना, हम अपनी बहन को यही बातचीत सुनवाते हैं।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत सारी योजनाएं हैं कल्याणकारी जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन सफल तभी होंगी अगर हम संगठित होकर उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम त्यागी, जिन्होंने 300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वयं भी उद्यमी हैं और संघर्ष के बल पे अपने इस मुकाम को पाया है। और आज 300 ग्रुप को चलाकर वो कितनी ही महिलाओं के जीवन में एक अनोखा बदलाव ला रही हैं, उन्हें सक्षम बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलम त्यागी का।
2: सभी बहनों को राम राम। संगठन का जो शब्द है ना, ये अपने आप में ही निराकार शब्द है। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि अगर हम उंगली ऐसे खोले ना, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हमने ये पांचों उंगली बंद करके मुट्ठी बंद कर ली तो

जरूर सामने वाले को तोड़ सकता है, वो खुद नहीं बिखर सकता। इसी दिशा में जो प्रयास है हमारी सरकार का, स्वयं सहायता समूह अपने आप में एक संगठित शक्ति है। स्वयं सहायता समूह क्या है, वो सबसे पहले उसमें अगर आप रूप की बात करेंगे तो कम से कम 10 महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाओं का एक संगठित रूप है जो एक ही गांव में, जिनका मानसिक लेवल, सामाजिक लेवल, आर्थिक लेवल एक जैसा हो, उनको एक साथ एक समूह बनाना। एक बच्चे का नाम जैसे रखा जाता है, समूह का भी नाम रखा जाता है। उसकी जो पदाधिकारी होते हैं उसमें अनपढ़ महिलाएं भी रह सकती हैं। अच्छी बात यह है उसमें 3 महिलाएं जो पदाधिकारी होती हैं, जिसका सब कहना मानते हों, कोषाध्यक्ष जो थोड़ी पढ़ी लिखी हों, सचिव भी पढ़ी लिखी हों जो रजिस्ट्रों का देखरेख कर सकें, लिख सकें लेखा जोखा, फिर उनका बैंक जो वो महीने में काम करती हैं उसमें से थोड़ा सा बचा के, ऐसे उदाहरण समझिए कि हमने रसोई में कोई सामान लेके आए, हम चीनी लेके आए, चाय की पत्ती लेके आए, उसमें से एक एक मुट्ठी निकाल के हमने अलग सेव करते गए, तो 12 महीने में देखेंगे वो डिब्बा भर जाता है। तो कभी भी उसमें से कमी नहीं पड़ती है। हम महिलाएं अपनी रसोई से लेके और उद्यम तक और बाहर तक सबको संभालना जानते हैं। बस जरूरत है महिलाओं को उन सब चीजों को समझने की जो अवसर आज के टाइम में है। 2025

0: सदिन खूबसूरत दिन वही था क्योंकि हमें संघर्ष करने को वहां से मिला। जब संघर्ष किया फिर हमने पहले स्वयं सहायता समूह अपना बनाया। स्वयं सहायता समूह जब मैंने अपना बनाया तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसी स्कीम है जो अपने साथ और अपनी 20 बहनों की पूरी मदद करता है पारदर्शिता के साथ। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, एक भी कटती है तो 5 को दर्द होता है, उसी तरह से समूह का काम होता है। फिर मैंने 10 समूह बनाए, फिर मैंने इसको और तेज गति दी, फिर मैंने 300 समूह।
1: तो आप जब वहां से हुए तो आप जुड़े किससे जब आप गांव से बाहर निकले?
0: क्योंकि जब मैं गांव में समूह बनाए थे तो गांव में नाबार्ड के AGM पहुंचे थे और बैंक के मैनेजर थे जिन्होंने वो समूह बनाने का मुझे सिखाया था। मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रही थी उस समय। जब मैं गांव से निकली तो मैंने उनको फोन किया
1: जी।
0: कि सर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने मुझे एक NGO का रास्ता बताया कि आप वहां जाके काम करिए। मैंने एक NGO में नौकरी करी और नौकरी करने के साथ मैंने ये सीखा क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत दिन नौकरी नहीं करनी है, अपना काम करना है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं जो मेरी तरह परेशान हो सकती हैं, तो मैं उनकी मददगार कैसे बनूं, उनको मैं दिशा कैसे दिखाऊं, ये मेरा अपना उसी समय से फोकस था।
1: यानी कि जहां चाहा थी आपकी वही राह मिल गई।
0: हाँ हाँ, वही राह मिली मुझे। फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, मैंने MA सोशियोलॉजी किया। इसी बीच में मेरे पास 2 बेटे 1 बेटी, उनकी परवरिश भी थी, नौकरी भी करना, पढ़ाई भी करना, उन बच्चों की भी देखरेख करना, तो वो अपने आप में एक तपस्या वाला काम था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊं क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हमें ना बहुत सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी
1: और ये भी सोचना, विश्वास करना बड़ा जरूरी है कि संघर्ष ही हमारी शक्ति है।
0: बस
1: इसी को हथियार बनाना
0: है। तो मैंने फिर एक NGO बनाई। NGO के साथ साथ मैंने अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़ा किया। ऐसी महिलाएं जो भटक रही हैं इधर उधर, उनको रास्ता देने के लिए वहां पर ट्रेनिंग का सेंटर बनाया। पूरा 100 महिलाएं मेरे यहां पर रह के ट्रेनिंग कर सकती हैं। फिर मैंने हैदराबाद के साथ में नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर बनाया। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे भी मेरे यहाँ से आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के बच्चे हैं जो आज ट्रेनिंग लेते हैं। 45 डेज तक वो मेरे पास रहते हैं। फिर उसके बाद में एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के साथ साथ फिर हमने जो बच्चे किसान हैं, किसानों का ये था कि हमारे बच्चों को कैसे और आगे बढ़ाया जा सके क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, तो किसानों के लिए हमने क्या किया, किसान खेती करें, महिलाएं प्रोसेसिंग करें, और जो उनके बच्चे हैं जो आज सभी परेशान हैं कि बच्चे सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और बच्चे बाइक चलाते हैं, तो हमने कहा इनका जो ये माइनस पॉइंट है इसी को आप जो है इस्तेमाल करो और इसी
1: प्लस करो,
0: प्लस कर दीजिए, इसी में इनको दौड़ा दीजिए, मोबाइल से ज्यादा चलाना जान। फिर उनको हमने क्या किया कि छोटे छोटे मैंने अपना फ्लोर मिल लगाया। फ्लोर मिल लगाया तो 5 टन आटा डेली मार्केट में सप्लाई किया। मार्केट में मैं खुद गई गाड़ी के साथ, तो मार्केट में भी बड़ा हल्ला मचा, बताओ अब ये समय आ गया महिलाएं आटा लेके आएगी
1: जी।
0: तो मैंने उनको भी समझाने का प्रयास किया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, मैं मार्केट में देखने आई हूँ कि परेशानी कहाँ है। वहां जाके देखा कि सब चीजें कंपनी से आती हैं, जो भी किसान हमारा बना रहा है, हमारे किसान सरसों पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, तमाम फसलें हैं जो हमारा किसान कर रहा है, लेकिन वहां सारी चीजें कंपनी से आती हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे किसान पैदा करें तो आप खरीदेंगे? कि हाँ बिल्कुल, हम किसानों से खरीदेंगे। अब किसान की प्रॉब्लम है कि वो क्वांटिटी में नहीं दे सकता, ज्यादा चीज नहीं दे सकता। जैसे फसल पैदा की तो उसको बेचना होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। तो उसी समय स्कीम आ गई FPO। FPO जो आ गया तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वो हमने क्या किया, किसानों की कंपनी बना दी, कोपस एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना दी। कोपस एग्रो के नाम से एक फूड इंडस्ट्री लगा दी। फूड इंडस्ट्री में हम किसानों से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो किसानों को दूर मार्केट में नहीं भागना पड़ेगा, बीच के बिचौलिया हट गए,
1: परिवहन का खर्चा बच गया,
0: सारे खर्चे बच गए। अब उसी में हमने क्या किया है कि जो उनके बच्चे हैं उन्हीं को दुकान खोलने का, आउटलेट खोलने का मौका देंगे, तो अब उनको अलग से बेनिफिट हो गया, पूरा स्टाफ लगा दिया, प्रोसेसिंग हो जाएगी, मार्केटिंग भी हो जाएगी। लेकिन कुछ महिलाएं वहां पे जो एक्टिव महिलाएं हैं, तो एक्टिव महिलाओं को मैंने फिर पहले चिन्हित किया, कुछ महिलाएं मार्केटिंग भी कर सकती हैं, कुछ महिलाएं पैकेजिंग कर सकती हैं, कुछ महिलाएं प्रोडक्शन कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रेडिंग से लेकर पैकेजिंग मार्केटिंग सब। मार्केट लिंकेज के लिए जो कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हम बनाते हैं उससे ज्यादा खपत उस जिले में हो सकती है अगर थोड़ा सा सहयोग हमें अधिकारियों का मिल जाए, थोड़ा सा सहयोग वहां पे मिल जाए तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं कि कहाँ कहाँ हमारे होलसेलर बैठे हैं, कहाँ रिटेलर बैठे हैं, उनको क्या चाहिए, किस तरह का माल चाहिए, क्वालिटी में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए,
1: पैकेजिंग कैसी चाहिए,
0: पैकेजिंग कैसी चाहिए, अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने ऑयल मिल लगा दिया, मसाले की यूनिट है, मल्टीग्रेन आटा है, मिलेट्स है, तेल, बेसन, सिरका, अचार, आपका शहद, जो भी हमारी रसोई में यूज होने वाले प्योर प्रोडक्ट हैं उनको हमने उसमें लगा दिया। हमारी मैं यूनिवर्सिटी साथ आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में है, कृषि विज्ञान केंद्र साथ आ गए और आईसीआर साथ आ गए। तो हमारा प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, टेक्निकल सपोर्ट बाय केवीके और आईसीआर और सरदार वल्लभ भाई।

0: पटेल यूनिवर्सल। द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में जो किसानों के बच्चे हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं उनको हम 15 डेज का कोर्स कराते हैं, तो वो खाद भी दवाई का लाइसेंस लेके काम कर सकते, अपनी दुकान खोल सकते। बहुत अच्छा लगता है ये बताने में कि 10,000 इनपुट डीलर हैं उत्तर प्रदेश में जिनको मैंने खड़ा किया।
1: बहुत बड़ी बात है कि सच में आपने खुद को भी स्थापित किया, खुद को भी सिद्ध किया और अपने संघर्ष के बल पे इतने सारे लोगों पर रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया।
0: तो हमें क्या करना है, शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है और रोजगार पे काम करना है। गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी बनाया गया, मैं फैमिली कोर्ट में कंसल्टेंट भी बनाया गया, हाई कोर्ट से नॉमिनेट किया गया, 11 नेशनल अवार्ड भी मैंने लिए जिसमें मेरा उद्यान रत्न, एनसीआर रत्न, यूपी रत्न, त्यागी समाज रत्न, सारे रत्न मैंने लिए, डॉक्टरेट की उपाधि मैंने ली, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल में मुझे प्रोफेसर की उपाधि मिली। हमें अपना उत्साह बनाए रखना है, जुनून बनाए रखना है।
1: बिल्कुल सही बात है, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा पाकर आगे बढ़ना है, खुद को सिद्ध करना है। थोड़ी मुश्किलें होंगी, दूसरे से मिलके संगठन से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद नीलम त्याग।
2: रेनू कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है, और खास करके बात करें अगर किसी चीज को हम करना चाह रहे हैं, कभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे जो जरूरी बिंदु होता है वो होता है उत्साह, और मन में आशा बनी होनी चाहिए। ऐसी ही बहुत सी बातों को बताया हमारी जो गाजियाबाद की हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप संचालिका नीलम त्यागी ने, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी नीलम मदान, वरिष्ठ हमारी अनाउंसर, और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया कि कैसे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास किया जा सकता है। तो कोशिश हमारी भी होनी चाहिए, हमारी जो बहनें सुन रही हैं कार्यक्रम को, उनको भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आगे बढ़ सके। और जब चार सहेलियां होती हैं रीनू, बातें करती हैं, तो इन बातों के साथ साथ आपस में कुछ और भी चहलकदमी होती है, कुछ चुलबुली सी बातें होती हैं, किस गाने के जरिए हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

0: और यमुना, देखो गर्मी इन दिनों बहुत तेज है और जो सूरज देवता है वो पूरी तरह से अपने तेवर दिखाने में लगे हुए हैं। गर्म हवाएं लू थपेड़ों की तरह हमारे शरीर को झुलसाने लगती हैं और ऐसे में जब हमारी बहनें भी काम करती हैं, हम भी काम पर निकलते हैं, तो देखो सूरज की गर्मी और किरणें परेशान तो करती हैं और ऐसे वक्त में हमें किसकी तलाश होती है? देखो ऐसे वक्त में हमें तलाश होती है उस ठंडे शीतल जल की, जो कि हमें तुरंत राहत दे सके और गर्मी से हमारे शरीर को ठंडक मिल सके। आज बहुत सारी ऐसी जो कोल्ड ड्रिंक्स चल गए हैं जिनको कि लोग तवज्जो देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना यमुना, वो इतनी उच्च है कि भारतीय संस्कृति में इतने अच्छे पेय पदार्थ बने हुए हैं जो हमारी ग्रामीण बहनें तो प्रयोग करती ही हैं। अगर विश्व में भी लोग उनका प्रयोग करें ना, तो उन्हें वही बात है कि आम के आम गुठलियों के दाम।
1: बिल्कुल रेनू, आपका कहना है कि जो अपनी संस्कृति की हम बात कर रहे हैं तो हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो हमारी परंपरा में शुरू से पारंपरिक पेय चलता चला आ रहा है। कभी सत्तू के घोल पी लिए, कभी चौ का घोल पी लिए, तो मतलब होता है ना कि, और कभी कभी आम का आमिया बना लिए, आम उबाल के उसका रस बनाए, उसमें जरा सा जीरा जरा सा काला नमक मिलाए और ठंडा सा बन गया, उसको हम पी लिए। इसी तरीके से बहुत से पेय पदार्थ होते हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक
0: होते हैं। और देखो जैसे अभी ये तुमने आम का पन्ना कहा, उसी में जो सत्तू है, सत्तू को तो ये कहा जाता है कि गर्मियों में सुपर फूड से किसी कम नहीं होता और गरीबों का फ्रिज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि देखो फ्रिज तो फिर भी नुकसान करता है, लेकिन सत्तू को अगर पिया जाए तो इसको पीने से हमारे शरीर को राहत तो मिलती ही है, इसके साथ साथ आराम से काम भी किया जा सकता है, क्योंकि शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं और गर्मी में जो परेशानी होती है वो भी नहीं हो पाती इसका नियमित रूप से सेवन करने के बाद।
1: एक बात और है कि अगर लू में निकल रहे हैं, धूप की थपेड़ों में निकल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज की गर्मी,
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में जो है जब घर से बाहर निकलते हैं तो पुराने जमाने में क्या, अभी भी जिनको पता है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्या करते हैं, प्याज को पीस करके उसका थोड़ा सा रस निकालते हैं, एक चम्मच बच्चे को या जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उसे पिला देते हैं, तो जो प्याज का हम रस पीते हैं उससे हमें लू नहीं लगता है। और इतना ही नहीं है, छाछ की बोतल भी दे सकते हैं उसमें, कि छाछ की बोतल रहेगी तो उसमें जीरा उरा पड़ा रहेगा तो सुपाच्य रहेगा, ठंडक देगा, तरावट देगा हमारे शरीर को।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे पुदीना है, जलजीरा है, तो बहुत से ऐसे चीज हैं जो पेय पदार्थ आप घर में बना सकते हैं। हम थोड़ा बता भी सकते हैं कि कैसे बन सकता है।
0: बिल्कुल, ऐसे बेल का शरबत भी है, देखो बेल को भी गर्मियों में वरदान कहा जाता है और इसकी तासीर जो है वो बहुत ही ठंडी होती है। इसको रात भर पानी में भिगो कर रख दें और उसके बाद ये जली जैसा हो जाता है, इसे फिर दूध पानी के साथ मिलाकर, और जब गर्मियां मरोड़ होते हैं, दस्त की समस्याएं होती हैं, तो बेल का जो सेवन है वो बहुत अधिक राहत देता है।
1: अब पाचन

0: बात कर लें तो जैसे पुदीने की बात है, तो पुदीने की जब अभी तो पुदीना हरा मिल रहा है, तो बहुत से समय ऐसा जैसे पुदीना नहीं मिल रहा है तो उसकी पत्ती हम सुखा के रख लेते हैं, पाउडर सा बना के रख लेते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा हम पानी लिए और थोड़ा सा आम का हम हल्का सा पना लिए, उसमें थोड़ा सा पुदीना हमने मिलाया, थोड़ा जीरा पाउडर मिलाया, थोड़ा सा काला नमक मिलाया, सादा नमक मिलाया और घोल बना के, और हल्का सा अगर हींग है तो हल्का सा हींग भी डाल दी, बहुत ही सुपाच्य बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। और ऐसे सत्तू की हम जब बात किए हैं, सत्तू के घोल को बनाने को कि कैसे शरबत जैसा बना के आप पिए, तो सत्तू आप चने के सत्तू ले लीजिए, चाहे जौ के सत्तू को ले लीजिए, पानी लीजिए एक चम्मच, उसमें एक ग्लास पानी में एक चम्मच सत्तू डालिए, थोड़ा सा आमिया का रस डालिए और ना हो तो नींबू डाल लीजिए, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा वो काला नमक, और ये सारी चीजें मिला के पीजिए, देखिए कितना स्वादिष्ट लगेगा। और जब बाहर आप निकलते हैं तो कोशिश करिए कि कांच का बॉटल हो या स्टील का हो कुछ, उसमें रख के आप निकलिए, प्लास्टिक में तो ना ही रखिए। तो ऐसे आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देते हैं तो शीतलता बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा
1: और पेट को भी ठंडक और आराम मिलेगा।
0: लेकिन एक बात और है रेनू, अब देख लो मेरा गला आज बैठा सा नजर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ क्या किया है, उतार चढ़ाव कुछ किया, कभी ठंडा पी लिया तो कभी गर्म पी लिया। तो ऐसी चीजों से बचें, जैसे आप गर्मी से आ रहे हैं और तुरंत आप ठंडा पानी पी लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर में कोशिश करनी चाहिए कि घड़े में पानी रखें, इसका उपयोग ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर घड़े का पानी स्वादिष्ट और सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देगा। और एक बात और है, ये सारी चीजों को करेगा कौन, घर की घरनी करेगी। और जब घर की घरनी लग के कोई काम करती है तो घर सुव्यवस्थित रहता है, और जब घर सुव्यवस्थित रहता है तो घर का जो सदस्य होता है वो चहक उठता है कि हमारा घर, जो हमारा घर है, जो हमारी बगिया है, महक रहा है, और महक आने वाली कोई और नहीं, हमारी भाभी है। तो चलते हैं ये गीत के माध्यम से आनंद उठाते हैं।

0: और यमुना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी बहनों को उनसे प्रेरणा भी मिलती है। तो आज हम अपनी बहनों को बताने जा रहे हैं भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू के बारे में। ये भारत की एक बहुत ही महान और अद्भुत महिला थी। इन्होंने अपनी कलम से कविताएं भी लिखी और इसके साथ साथ कलम के साथ साथ इन्होंने देश की आजादी के लिए तलवार भी उठाई थी। इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था और असाधारण बुद्धिमता की धनी ये थी। इसके साथ साथ यमुना, सबसे खास बात इनमें ये थी कि ये बहुभाषाविद थी, यानी कि देखो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू और तेलुगु सभी भाषाओं पर ये अपनी समान पकड़ रखती थी। और कलम की ताकत तो इनकी ऐसी थी कि केवल 13 साल की आयु में ही इन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक 1300 पंक्तियों की एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी। देखो जहाँ 10 लाइनें लिखने में हम सबके मतलब सोचने लगते हैं क्या लिखें क्या लिखें, वहाँ केवल 12 साल की आयु में 1300 पंक्तियों की कविता लिखना मायने रखता है।
1: ये जो बात कह रही हो कि उन्होंने लेखन के जरिए भी अपना नाम किया,
0: बिल्कुल,
1: तो नायडू ने महिलाओं के लिए एक वाक्य कही थी रेनू, वो वाक्य थी अपनी महिलाओं को शिक्षित करो।
0: बिल्कुल,
1: अपनी महिलाओं मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए वो कह रही है संबोधन में, अपनी महिलाओं को शिक्षित करो फिर राष्ट्र खुद ब खुद अपना ख्याल रख लेगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये कल जितना सच था उतना ही आज भी सच है कि जो हाथ पालने को झुलाते हैं वही दुनिया पर शासन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सरोजनी नायडू की जो हम बात कर रहे हैं तो आपने जैसे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी थी, तो महिला भारत जो भारतीय संघ थी उसकी स्थापना भी इन्होंने की। तो सच कहें तो जो लोग हमारे बीच नहीं है या जो लोग हैं और महान कार्य कर रहे हैं तो उनसे हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं कि हाँ वाकई अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो हमारी प्रेरणा है और प्रेरणा की स्रोत है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता है जीवन में, और जो हमारी वीरांगनाएं हैं उन वीरांगना क्रम में आज हम सरोजनी नायडू की बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और देखो कलम के साथ साथ इन्होंने जो आजादी के आंदोलन में भी बहुत ही ऐतिहासिक अपनी भूमिका निभाई थी। इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से देश सेवा का मार्ग चुन लिया था और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिसमें इन्होंने भाग लिया। और यमुना, हम कह सकते हैं कि ऐसी ही महान वीरांगनाओं के कारण आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। वरना सोचा जा सकता है कि परतंत्रता की आग में किस तरह से इन महिलाओं ने देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया होगा।
1: बिल्कुल, हम नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं अपनी ऐसी वीरांगनाओं के प्रति और भक्तिभाव में डूबते हैं देश के प्रति।

0: और यमुना जिस तरह से देश की वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए काम किया है, उसी तरह से आज हम आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बहनों से बात कर रहे हैं। आकाशवाणी का सफर भी बहुत लंबा है, 90 सालों से हमारी बहनों को और पूरे देशवासियों को राह दिखाई है और बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जागरूक करने में अगर हम कहें कि आकाशवाणी का भी हाथ रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारी ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम और इन्हीं बहनों के माध्यम से बहुत सारी बहनों ने अपना नाम रोशन किया है, जिनमें हम अनीता देवी का नाम ले सकते हैं, धान की संरक्षिका कमला कुमारी का नाम ले सकते हैं, किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी का नाम ले सकते हैं और साथ ही साथ राजस्थान को पारंपरिक कढ़ाई में नाम दिलाने वाली रूमी देवी का नाम भी हम ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। और योजना क्रम में अगर आज हम कहें तो आज हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। बालिकाओं पर केंद्रित सुकन्या समृद्धि योजना खास करके दो बालिकाओं के लिए ये योजना है। खास करके जैसे घर में अगर जन्म लेती है बच्ची तो एक और दो बच्चों तक ये सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाया जा सकता है, जिसके लिए जैसे बच्ची जन्म लेती है आप तैसे ही खाता खुलवा सकते हैं। उसके लिए जो जरूरी कागजात होंगे, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका हो, बच्चे का हो, किसी का भी हो, मतलब माता पिता या बच्चे में से कोई एक का हो सकता है, और आपका खाता होना चाहिए उस डाकखाने में या बैंक में, और आप 1,000 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं और न्यूनतम अगर राशि हम बात करें तो 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप साल भर में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। तो जब बच्ची जन्म लेती है और उससे लेकर के जब वो 18 वर्ष की होगी तो आप आधी धनराशि या 10वीं पास होती है तो आप जो जमा राशि आपने किया है उसमें से 50% आपको मिल सकता है उसकी शिक्षा के लिए, उसकी विवाह के लिए, और 21 साल पे उसकी मैच्योरिटी होती है, पूरा धनराशि मिल जाएगा। इस तरीके से आप सुकन्या समृद्धि का लाभ उठा सकते हैं डाकखाने या नजदीकी जो बैंक है वहां पे जाकर के। और कहते हैं जब पैसा ज्यादा होता है तो सच कहें तो गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो होता है वो एक कहते हैं कि फली डाल जो होती है वो झुक कर रहती है, जब डाल जब पेड़ पे कोई फल आ जाता है तो उसी प्रकार से इंसान को थोड़ा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि पैसे पे गुरूर करना ठीक नहीं होता है।

0: और अगर हमारी बहनें हमें कुछ लिखना चाहें तो वो हमें ईमेल कर सकती हैं feedback@gmail.com पर।
1: और जो हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली पिन कोड है 1100001।

0: और हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारा सर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: और आज अगली कार्यक्रम में जो आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, ग्राम संसार कार्यक्रम और लोक रंजनी जो 5:10 से शुरू होगा, 5:20 पर खत्म हो जाएगा। और कृषि जगत कार्यक्रम 6:30 से 7:00 तक, ग्राम संसार 7:05 से लेकर के 7:30 तक। इसी के साथ बहनों हमें दीजिए इजाजत, सभी को राम राम। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की

0: आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization, ISRO Chairman V. Narayanan, has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो अपने संगीत, कलाकारों के अभिनय और सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी के कारण आज भी याद की जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है वर्ष 1959 में प्रदर्शित कन्हैया। निर्देशक थे अभिनेता और फिल्मकार ओम प्रकाश। निर्माता थे संत सिंह पंछी। संगीत दिया था महान जोड़ी शंकर जयकिशन ने और मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मदनपुरी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत के साथ।

वाह क्या मधुर धुन। मुकेश की गायकी और शंकर जयकिशन का संगीत इस गीत को अमर बना देता है। एक रोचक बात आपको बता दे दोस्तों कि इस गीत का फिल्मांकन उस दौर में काफी चर्चित हुआ था। गीत में राज कपूर जिस अंदाज में नायिका को रोकने की कोशिश करते हैं वो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। आपको ये फिल्म कैसी लग रही है, स्टोरी कैसी लग रही है, आप हमें इसके लिए मेल कर सकते हैं। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार होगा और आपकी मेल कार्यक्रम के बीच में जरूर शामिल की जाएगी। तो फिल्म कन्हैया की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। इस गांव में रहती है एक भोली भाली और धार्मिक लड़की शानू, जिसका किरदार निभाया है नूतन ने। शानू भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। वे हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबी रहती है। उधर गांव में एक लड़का है जिसका नाम है कन्हैया।

भूमिका निभाई है राज कपूर ने। ये कन्हैया एक लापरवाह और निठल्ला और शराबी है। एक दिन अचानक शानू की मुलाकात कन्हैया से होती है और नाम के धोखे में वो उसे अपना भगवान कृष्ण समझ बैठती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ क्या आता है, इससे पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि अब शानू के मन में कन्हैया के लिए भावनाएं और गहरी होने लगती है। दूसरी तरफ असली कन्हैया इस गलतफहमी को समझते हुए भी उसे दूर नहीं करता। धीरे धीरे गांव में दोनों के प्रेम की चर्चाएं फैल जाती हैं। तो गांव की पंचायत दोनों के विवाह का फैसला करती है। शानू अपने सपनों को सच होता हुआ देख रही है, लेकिन विवाह के समय उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये वो कन्हैया नहीं है जिसकी शानू पूजा करती आई है। शानू का दिल टूट जाता है।

किया था। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म और ये हमें संदेश मिला है चंडीगढ़ से, इनके साथ है बिमला अनेजा जी। और अगला संदेश हम शामिल करते हैं, दिनेश वर्मा का संदेश हमें ये मिला है, उनको कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इन्होंने, दिनेश वर्मा जी ने हमें ये मेल भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है करुणा वर्मा। और अगला संदेश हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं, ये है निसार अली का। इनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये भी हमारा प्रोग्राम बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, धन्यवाद। और अगला संदेश है, ये संदेश आया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से। इन्होंने लिखा है, आज एक ही फिल्म प्रोग्राम में नंदा जी प्रोग्राम पेश कर रही हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, आपको नमस्कार। और इन्होंने, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। आज की फिल्म कन्हैया, जिसमें राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और संगीत शंकर जयकिशन की संगीत से सजी फिल्म लाजवाब है। इसके आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिल्म पसंद आ रही है और फिल्म के गीत भी पसंद आ रहे हैं। और अगला हमें संदेश मिला है बबलेश पनवर जी का, गांधी चौक बाड़मेर राज से। इन्होंने भी फिल्म कन्हैया से जुड़ा एक किस्सा हमें लिखकर भेजा है। फिल्म के क्लाइमैक्स और कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। गांव वाले शन्नो के चरित्र पर उंगली उठाते हैं और खुद को पवित्र साबित करने के लिए सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देने की जिद पर अड़ जाती है। जब शन्नो चिता पर बैठती है तो राज कपूर का किरदार उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन लोग उसे पीट कर भगा देते हैं। इसके बाद कन्हैया पहाड़ पर दौड़कर जाता है और रोते रोते भगवान कृष्ण को पुकारता है और वो आकर सच्चे भक्त की रक्षा करे, वो ऐसा बोलता है। तो थिएटर में इस सीन को देखकर दर्शक भावुक हो गए थे और फिल्म के सबसे दमदार दृश्यों में से इसे माना जाता है। इस जानकारी के लिए बबलेश पनवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो जरूर इस फिल्म को देखें। अगला संदेश आया है कमलकांत जी का, पीपरिया से, और इनको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इनके साथ है इनके परिवार के अन्य सदस्य। और अगला संदेश मैं शामिल कर लेती हूँ राधे श्याम शर्मा जी का, हांडी खेड़ा सिरसा से, और इनके साथ है इंदिरा शर्मा। इनको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और फिल्म से जुड़ी जानकारी भी इनको अच्छी लग रही है और गाने तो कर्णप्रिय लग ही रहे हैं, धन्यवाद आपका। और अगला एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी, धर्मेंद्र छिप्पा जी का। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप चर्चा कर रहे हैं, बेहतरीन फिल्म, बिल्कुल सही कहा। ये संदेश हमें मिला है भोपाल गढ़ राजस्थान से, इनके साथ हैं कपिल छिम्पा और पूजा परिहार जी। तो अभी संदेशों को देते हैं एक विराम और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कन्हैया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। गांव पर संकट आता है, लोग परेशान होते हैं, ऐसे समय में कन्हैया आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है। उसके अंदर का अच्छा इंसान सामने आने लगता है। शानो भी उसके बदले हुए रूप को देखती है। शानो को महसूस होता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने वाले इंसानों में भी बसते हैं। शानो को समझ आ जाता है कि सच्चा कन्हैया वही है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो। शानो भी महसूस करती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इस प्रकार शानो कन्हैया को अपना लेती है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपके हम संदेश शामिल कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो ये पहला संदेश हमें मिला है फागुराम यादव का। इन्होंने लिखा है, सप्रेम नमस्कार नंदा मैडम, आपको भी हमारा नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें संदेश भेजा है इन्होंने संबलपुर कांकेर से। फागुराम यादव के साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं, ये संदेश हमें मिला है सतीश अनेजा का। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। कन्हैया फिल्म अपना लोहा मनवा चुकी है, बिल्कुल मनवा चुकी है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्फर आपके साथ आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। फिल्म कन्हैया में राज कपूर ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो शुरू में लापरवाह दिखाई देता है लेकिन बाद में उसके अंदर का संवेदनशील इंसान सामने आता है। राज कपूर ने इस परिवर्तन को बहुत बाखूबी से निभाया है। वहीं नूतन ने शानू के किरदार में मासूमियत आस्था और भावनात्मक संघर्ष को इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दर्शक उनकी कला के कायल हो गए। ललिता पवार और मदनपुरी ने भी अपने अपने किरदारों को मजबूती प्रदान की। फिल्म की कहानी भक्ति और मानवीय प्रेम के अनोखे मेल पर आधारित थी जो उस दौर में काफी अलग विषय माना गया। दोस्तों फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में लोक धुनों और मधुर मेलोडी का सुंदर मिश्रण पेश किया। गीतकारों ने भी सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया। मुकेश की

आवाज ने गीतों को अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी साल 1959 की फिल्म कन्हैया, एक ऐसी फिल्म जिसमें भक्ति, प्रेम, विश्वास और इंसानियत का सुंदर संदेश छिपा है। तो दोस्तों, कुछ और मेल जाते जाते कुछ और मेल शामिल कर लेते हैं और साथ में आपको इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत मैं सुनवाना चाहूंगी। गीत के साथ साथ आपके संदेश भी शामिल करूंगी और इसी गीत के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

समय आया है बिट्टू गंग नेजा जी का, इन्होंने ये संदेश भेजा है जलालाबाद वेस्ट से। इनके साथ है पूनम गंगनेजा। और भी एक दो मेल मैं शामिल करना चाहूंगी। अगला संदेश आया है संदीप मक्कर जी का, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत मक्कर, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। ये संदेश आया है जलंधर से। और एक संदेश और शामिल करना चाहूंगी। नमस्कार आरजे जी, नमस्कार। ये हमें मेल भेजा है भूषण खेड़ा जी ने। इनके साथ हैं विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, वाणी खेड़ा। और ये संदेश हमें मिला है पंजाब खेड़ा परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही अगर किसी का मेल मैं शामिल ना कर पाऊं समय की पाबंदी की वजह से, तो आप नाराज मत होइएगा, अगले प्रोग्राम में आपका मेल जरूर शामिल किया जाएगा।

0: हमें मिला है नरेंद्र सूथर जी का, ये मेल है हनुमानगढ़ राजस्थान से। इनके साथ है मनोज सूथर और हिमांशु जी का। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनाव में खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस से इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वड्डी गल्लबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में सेहत संभाल को बेहतर और किफायती बनाने लिए कई कदम चुके गए हैं। जनगणना 2027 तहत पंजाब में मकानों के सूचीकरण से गणना का पहला पड़ाव तय समय से सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस से लोगों को स्वेच्छा नाल खूनदान करने की अपील की है। भारत अज आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में अपनी मुहिम की शुरुआत पाकिस्तान खिलाफ मैच नाल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन साल के हिस्से वजों आयोजित इस समागम में 120 तो वध भारतीय स्टार्टअप्स आलमी निवेशक तकनोलॉजी आगू ते उद्यमी इकट्ठे होंगे। इस समागम भारत के तेजी नाल वध रहे नवीनता इको सिस्टम नूं प्रदर्शित करेगा। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ते राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष आलमी रणनीतिक भाईवाली विच प्रगति की समीक्षा करने लई दुवल्ली गल्लबात करनगे ते मुख खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां ते चर्चा करनगे। पहला नीस पहुंचण ते प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय भाईचारा ने होटल

0: पुलिस के मुताबिक रांची में दो अफराद की मौत हुई जबकि गढ़वा जिले में भी दो अफराद मारे गए। दीगर अमवात की इत्तला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान जिले से मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले दो तीन दिन में कर्नाटक के बकिया हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, नीज जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी खित्ते, अंडमान निकोबार जजायर, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज बारिश होने का इम्कान है। ख्वातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज ग्रुप ए में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच बर्मिंघम में एजबेस्टन में खेला जाएगा और ये भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France Special Global Strategic Partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in next 2 to 3 days. Over 5,000 Bharatanatyam dancers create Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson in Colombo. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice in a short while from now, alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review the progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, investors and technology leaders from across the world. The event is expected to showcase India's growing strengths in innovation, entrepreneurship and emerging technologies. Later, the two leaders will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss ways to further enhance cooperation in areas including technology, trade and defense. Following the talks and a luncheon hosted by President Macron, Prime Minister Modi will leave for Slovakia on the next leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: Talking to Akashvani, co-founder of Sarvam AI expressed his appreciation for the first-of-its-kind initiative by the Government of India to bring a large number of startups onto a single arena, giving them excellent opportunities and exposure.
3: My name is Vivek Raghavan. I am the co-founder of Sarvam AI. This is actually a very exciting event. I think for the first time, the Government of India has made an initiative to bring so many startups here to make them well-known in France. I think this is a first-of-its-kind initiative.
1: Co-founder of Quantfluence, Aditi Vaidya, highlighted how the maiden edition of Bharat Innovates was giving startups like theirs a platform to meet investors, researchers, as well as

0: tapped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत

राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित

0: चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: सामीन अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 के नशरियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। मीडियम वेव सोचिक ना गबगेना निशुशबी नेबी किलोहर्ट्ज का दो आकाशवाणी करगिल इन वक्सपो निमे तुसु निज नफे चौसुक कसाता शीना प्रोग्राम यान मजाद पुनर प्रोग्राम फुचिखान पुन मोहतार अहमद प्रोग्राम प्रोड्यूसर पुन गुलजार हुसैन।

आकाशवाणी करगिल जो शिना प्रोग्राम पुनर्गी छे मखोरो मुख्तार जाहिद सुम सोहनो अजगा मुतो पुनरो गणगी पुनरे हयोन की छे मखोरो से अनि चमाठी की तोमे मिष्ट बाश तोमे खीवी बाश मगथे मा बाश शिना मजा मिष्ट मुझदुक थोन थे जारगा सजारे अनि तक छुपे मुस्की सुपूरे संभुवयात मिष्ट वुवयात और तोमे तोमे बचो साथ तोमे तोमे छाल बलो साथ खुशाट जिंदगी दबोनी दबोनी हयोन मिष्टी थे निखलो की चमार थे बुझा जारगा सजारे दबोनी मग तुटे जिंदगी एक हयोन दानो तो अने जिंदगी जा बस अने चमार थो की बाजी अने चमार छोने आवाजी कनाई वो जिंदगी खुशाटी बही कनाई वो जिंदगी हवा सुज तरी बुझी तो ऐसे कार जारगा सजारे खुदा बंद करीम से दबोन से तोमी रियाक कुरान करी मजागा मग तुटे मिष्ट मिष्ट बोध थे गानो ए मनुरो तुझ चमार थे कि तुझ तोमी जिंदगी मिष्ट थे निखलो भे मिष्ट थे दरियोबे पुनर्प्रोग्राम में मजा जारुगा सयारे मोजी तो गथे पतो अखाने कसो एक मिष्टो शायरे की मुष्टो पोकाशो को कलामे गत्सम छोरियो की बेस जमाट थे बुजुन।

बजकर 5 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहरे 3:30 तन्हाई का जहर, इसमें चुगताई के अफसाने पर मबनी इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे। शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी। शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये एक मुख्तसर तारुफ से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मिलकर भारत इनोवेट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैखों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने से मुतालिक माहदे पर आज दस्तखत किए जाएंगे। और क्रिकेट में ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के हमराह नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेजी के साथ फरोग पाते हुए इख्तराई इको निज़ाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैखों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस से खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमैनुअल मैखों मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस से खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैखों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वजीर आजम मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निज़ाम, मसनूई ज़हानत, सरमायाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाहिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मियारी हिफ्ज़ान सेहत को और ज्यादा कम खर्च और ज्यादा लोगों तक बहम पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्ज़ान सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमजोर तबकों के लोगों को आला मेयार के हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत, PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर

0: 1000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने से मुतालिक मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाएंगे। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। मेरी पसंद प्रोग्राम में आज आपकी नजर कर रहे हैं गुलकारा शारदा के गाये चंदना में। शारदा राजन अयंगर आपका पूरा नाम था। आज ही के दिन आपने इस दुनिया को अलविदा कहा था, आज उनकी बरसी है। 25 अक्टूबर सन 1933 को आपने जन्म लिया। मौसीकार शंकर जयकिशन ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और पहला ब्रेक दिया। फिल्म सूरज का नगमा, तितली उड़ी उड़ जो चली, ये नगमा उनकी पहचान बना। यूं तो सन 1970 की फिल्म जहां प्यार मिले के नगमे बात जरा है आपकी के लिए उन्हें फिल्म फेयर एजाज से नवाजा गया था। आइए उन्हीं के गाए चंद नगमे इस प्रोग्राम में आपकी नजर करते हैं।

एक और खूबसूरत और मशहूर नगमा जो शारदा ने गाया था रफी साहब के साथ फिल्म सीमा के लिए, आइए सुनते हैं। गुलजार साहब ने इस नगमे को कलमबंद किया मौसीकी शंकर जयकिशन की।

0: मेरी पसंद प्रोग्राम इस नगमे के साथ ही ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 के लोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी हैं। तन्हाई का जहर, इसमें चुपताई के अफसाने पर मबनी इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।
1: अरे बी, बस बहुत सो चुकी, आए अब कब्र में चैन से पैर फैला के सोना। हाय हे, कीड़े पड़े मुंह में, हरदम दर्राती सी चली जाए है, मुंह में बवासीर है कल मुही के, और तुम्हारी जबान को क्या आज लकवा मार गया है या बीबी चुपचाप का रोजा।

0: रोग बन गई है ना अपने प्यारे जी जान से जाते ना इस मुई कलमा कदी से पाला पड़ता
1: है। तो बहना मैं कब तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे कि मेरे संग चल के रहो। मुझे तो सदा से तुम्हारी सूरत से नफरत थी, हमेशा ही तुमने मुझे जख्म पहुँचाई। एक वो अल्लाह मारी तुम्हारी खजैली कुतिया थी, क्या भवन के दौड़ा करे थी, और लोग भी आने जाने थे मोहल्ले में, पर नहीं वो कमबख्त भी मुझी पे भक्का करे थी।
0: तुम्हारी सूरत ही ऐसी है पाको मारी हुई बकरी की सिटांगे।
1: हाय
0: मुई कुतिया भौंकती नहीं तो क्या तुम पर सदके मारी जाती।
1: हाँ भाई हम तो सदा के धान पान थे, तुम्हारी तरह नौज कोई हो दीन दौकल अल्लामिया का नौकर। मानो कल्लू पहलवान चला रहा हुए
0: ऐ अच्छा खासा हाथी का बच्चा थी, दूल्हा मियां ने उठा के पालकी में बैठाया होगा तो बेचारों का कलेजा ही निकल पड़ा होगा। हमारे दूल्हा ने तो हमें छत से पोल की तरह उठा।
1: चल मुई सूखी चरा खटाई की फाक। अरे बहना कभी कोई कपड़ा तुम पे न खिलाए
0: हटो
1: तो तनी मिट्टी का सा रंग जिस पे ये भड़कदार कपड़े कि शोख बसंती के जामनी के काकरेजी। तोबा तोबा जब देखो जोड़े तक रहे हैं जोड़े तक रहे हैं। बुआ तुमने तो अपने हसम की सारी कमाई कपड़ा लग कल कला को हाथ रोक के चली होती तो आज ये मेरे तेरे आगे हाथ ना फैलाने पड़ते।
2: जी आए हम तो खर्चीले थे। आए बहना तुमने कौन सा कारून का खजाना गाड़ लिया। हमने कपड़े लत्तों पर खर्च किया, तुमने खाने पीने पर उड़ा दिया। आए हर घड़ी हलवे मांडे से काम, नौज कोई तुम्हारी तरह न दीदा हो।
0: न दीदी तो तुम
1: नौज मुझे दस्ताते। हाँ पेट भारी हो जाया करे था कभी कभी, सदा की रिया की बीमारी जो है मुझे। अरे बुआ तुम तो पत्थर भी डकार जाया करो थी।
0: अकेली डकार जाऊं थी तुम्हें नहीं निगलवाया करूंगी।
1: अल्लाह न करे जो मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलती।
0: झूठों पर आली की फिटका।
1: अरे फिटकार तो तुम्हारी सूरत पे बसे
0: आईने में अपनी थूथनी तो दे।
1: मुई पुरानी जूती की शक्ल,
0: मौत भी तो नहीं आती।
1: अरे मौत आए तुझे तेरे हो तो सोतो को।
0: हम तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मैयत गाड़ के मरेंगे।
1: अरे अल्लाह पाक सुन ले मेरी।
2: हाँ हाँ को अरे पानी पी पी के को।
0: हाँ हाँ कोसूंगी अरे पानी पी पी के कोसूंगी। अरे हजार बार कोसूंगी किसी की आई इतना बुरा को लगे। अरे आप परवरदिगार
1: अब चुप भी होती है कि नहीं। कल जी भी इमाम हुसैन की

आई मानी चंदौसी से आ रही हूँ और कहाँ से आती? अरे अपने हाथों

0: Babaki.
1: Ma इस बुढ़ापे ने कहीं का न रखा, अरे बेटी कुछ भी याद नहीं पड़ता।
0: आए हाय, खून सफेद हो गया है मुमानी भी तुम्हारा तो। मैं अपनी खैरन को नहीं पहचानती हूँ। आए तो मुंडा मुमानी होना है
1: नाज। आए वो बैठी है तुम्हारी उम्दा मुमानी, बिस्किट

0: परेशानी भी नहीं जाती हो।
1: कुछ ना पूछो बेटी, दी अच्छा नहीं रहे है। बाकर खुदाए ख्वार ने बासी गाँव जबान भिजवा दिए है। बेटी इधर खाए उधर खाए हो गई, मुई पे जिसने तो मेरा खून ही निचोड़ लिया। बेटी
0: तेरा मना किया मगर जहर मार कर ही गई। खाना देख के तब बिल बिलाने लगे है।
1: आए हाँ खाया, किसी के बाप का तो नहीं खाया। अरे बेटी खैरन, सबसे बढ़ के तो ये मेरे जी को रोग बन के लग गई है। नौलाद मुझे डस गई है, अल्लाह कसम जला जला के आठा कर दिया।
0: जुर्वा एक एक के दस दस कोस, आए कौन सा हमें तो दम करवा दोगी। आए रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, आए किसी का भाग थोड़ी लेगी।
1: आए बकने दो, बौरानी कुतिया फोंक जावे है। आए बेटी बाल बच्चे तो अल्लाह के फजल से अच्छे हैं।
2: हाँ मुमानी अल्लाह का शुक्र है। आए अम्मा के मरने ने कमर तोड़ दी, तुम्हें लिखवाया तो था।
1: हाँ हाँ बेटी जवाब तो देती, पर कोई लिखने वाला ही ना जुड़ा।
2: आए मुमानी आए यहाँ काय को रहो, आए मेरे संग चलो ना।
1: आए अल्लाह कसम जीती रहो बेटी, तेरी हजारी उम्र हो। अरे मुझे यहाँ से ले चल चंदा।
2: आए मैं तुम्हें ले नहीं तो आई हूँ, ये मकान बेच डालो।
1: मकान? अरे बेटी ये मकान अपना थोड़े ही है, वो तो तुम्हारे मामू की जिंदगी में ही खुर्द बुर्द हो गया। जुम्मन मियाँ के गुजरते ही बिसाती वाला मकान भी छोड़ दिया। हाय बेटी ये तो अफजल मियाँ की मेहरबानी है, जो सर छुपाने को ये खंडहर दे दिए हैं हम नसीबो जली को। हाय मोहल्ले वाले अल्लाह इन्हें खुश रखे, रूखी सूखी जो तौफीक होवे हैं दे जावे हैं। बेटी महंगाई का जमाना है और सभी बाल बच्चे वाले हैं। अब तो वो महंगाई है कि तौबा तौबा, भला नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अल्लाह क्या जमाना था हमारा, रुपए से देसी घी हो
2: और भी शेर का आटा।
1: अरे बेटी अब तो जैसे तैसे गुजर हो ही जावे है। अब के साल खैराती की बहू ने पुरानी मिर्जई दे दी थी, हालांकि रुई ठंडी पड़ चुकी थी, पर फिर भी बेटी जाड़े तो तेर हो ही जाए।
2: अब के जाड़ा भी तो ऐसा किचकिचा के पड़ा था, हड्डियों का गूदा तक जमा जाए था।
1: अरे गर्मियां तो जैसे तैसे कट जावे हैं, मगर बेटी बरसात में तो यूं लगे है मानो ओलती के नीचे बैठे हो। अरे बेटी कब चलना होगा, मेरा तो यहाँ दम घुटा जावे है।
2: आई मुमानी जरा फुंदन मियाँ के हुआ हूँ। आई रास्ते में शामी की सलज मिल गई थी, कहने लगी भाभी हमारे यहाँ होके जाना। आई मैंने कह दिया बहू जरूर आऊंगी। बस मुमानी तुम अपने कपड़े लत्ते बटोरो, मैं रिश्का लेके अभी आई।
1: हाँ बेटी जल्दी से आ जाइयो, मेरा बस चले तो इस भाड़ घर में दम भर को ना टिकूं। खैर से अपने घर जाएंगे, वहाँ घर है के बेईमान की एक कब्र। अरे बेटी जल्दी आ जाइयो।
2: अरे हाँ ऐसी भी क्या तावली है मुमानी, अरे मुझे क्या किसी का मुंडन करवाना है, ये जच्चा गिरिया गानी है। अरे ये गई के वो आई।
1: हाँ बेटी आ ही जाइयो, नहीं तो ये बोरानी कुतिया फिर मेरी जान को आ जाएगी।
2: अरे हाय वारी वाह जुर्वा, मेरे सिर थोप दे सारा इल्जाम।
1: अरे बुआ तुमने तो मेरी मट्टी ही पलीद कर दी, अल्लाह जानता है हर वक्त के कचो के हर दम का जलापा। आए कोई साथ भी होती तो यूं उठते जूती बैठते लात ना मारती।
2: अच्छा बुआ हमारा क्या है, हमारे थी तो घुटनों के आगे आवेगा।

0: आपसे तार तो रही हो।
1: अरे अल्लाह जाने मेरी फट कहाँ गुम हो गई। अरे अल्लाह, हाथ पैरों में उठने का दम नहीं। सो
0: खानम बुआ, आज तो फेरी वाला भी नहीं बोला। ये उम्दा खानम, उम्दा खानम, अरे उम्दा खानम बुआ, अरे उम्दा खानम कहाँ पर गई?
1: अरे क्या है, काहे को गला फाड़ रही हो?
0: कुछ नहीं बुआ, मैं समझी तुम गई।
1: हाँ बुआ, चली जाऊंगी, काहे को घबराती हो? फिर चैन से रहना। अरे खुदा का वास्ता, मेरा पिंड छोड़।
0: बुआ तुम जा रही हो, अच्छा बुढ़ापा तो आराम से ढेर हो जाएगा। अरे बुआ, अरे कहा सुना, माफ करना।
1: अरे खामखा मेरे सर आ रही हो तुम तो। अरे मैं किसी का बैर कलेजे में नहीं पालती।
0: अरे नहीं बुआ, अरे तुम क्या मुझ नसीबो चली से बैर पालोगी? कीड़े पड़े इस मुई जबान में, काबू में ही नहीं रहते।
1: नहीं बहना, तुम फिर चुप की हो। अल्लाह मारी इस जबान की वजह से, अल्लाह बख्शे, अम्मा बेगम चार चोट की मार दिया करें थी। इस जन्म जली जबान की वजह से बड़े भैया से छुट्टम छुट्टा हुई, मरते मर गए सूरत न देखी।
2: अरे अब ये तस्वे क्यों बहा रही है?
0: मैंने तुम्हें बहुत जलाया, बहुत जलाया। उम्दा खाना तुम्हारा ही पिता था जो मुझे सहार गई। अरे कोई और होती तो मुंह में झुलसा लगा देती।
1: अरे बुआ, अरे तुम दिल की बुरी नहीं हो। अरे लो और सुनो, अरे तिरसापुरा कौन हो गई है?
0: बुआ मैंने तुम्हारी मोहब्बत का हमेशा ही खून किया, याद है? अरे पिछले जन्मों में जो मेरे गोतों में दर्द उठा था। अरे बुआ तुम न होती तो तड़प तड़प के मैं तो मर जाती, कोई हालत में पानी डालने वाला भी न जुड़ता। बुआ अरे तुमने कैसी कैसी मेरी खिदमत की थी।
1: इसमें खिदमत की भला क्या बात है, आखिर इंसान ही इंसान के दुख दर्द में काम आवे है। अरे बहना, मुझे जो 3 महीने जूड़े का बुखार आया था, हड्डियां तक पिघली जावे थी, तुमने तो मेरा गुमूत किया।
0: नहीं बुआ, हमेशा तुमने ही मेरी देखभाल की। याद है जब शब्बीर पैदा हुआ था, अल्लाह क्या दर्द थे, जैसे कोई आरा चला रहा हो।
1: अरे बहना, पहलौटी का बच्चा था ना, इसी से फिर लौंडिया की दफा इतना कहाँ हुआ।
0: लगते ही मैं तुम्हें बुलवा लिया करूँ थी, मेरी तो सास ननद माँ बहन सहेली बेटी सब कुछ तुम ही थी। बुआ जब तक तुम पट्टी पकड़ के न बैठो थी, ऐसा लगे था कि बस अब नहीं बचूंगी।
1: बुढ़ापे में खत हो गया है तुम्हें तो नौलास खानम, पास पड़ोस का इतना भी ख्याल ना हो तो दुनिया कैसे चले। मैं भी तो तुमसे कैसी कैसी खिदमत लिया करूं थी। याद है सलीम की मुसलमानियों पे सारी रात तुमसे जगात करवाया करूं थी, और खुद सन्नाटे के पैर पसार के सोया करूं थी।
0: शब्बीर भी तो साथ में पड़ा हुआ था, उसके लिए तो जागना ही हुआ था।
1: नहीं बहना, शब्बीर निगोड़ा फेर चुका था, सलीम एक सुअर। क्या जिदे किया करे था, क्या मजाल जो तुम्हारे सिवा किसी और के हाथ से निवाला भी ले ले।
0: मैं कहानियां जो सुनाया करूं थी, भाई एक थी चिड़िया, एक था चिड़ा, दोनों ने मिलके

0: अव्वल हुआ करे थी।
1: अल्लाह पाक ने सबको बुला लिया, हम ही रह गए हत्या घसीटने को। खुदा जाने के नामालों की सजा मिल रही है।
0: बुआ, मैं तो खैर गुनाहगार बंदी हूँ, पर तुम तो हमेशा आई पांच वक्त नमाज पढ़ती हो, आई कुरान की तिलावत कभी नागा ना की, कभी रोजे ना खोए, फिर अल्लाह मियाँ आई तुमसे क्यों रूठ गए?
1: मर्जी उस कहार जब्बार की बीवी, इसमें किसी को क्या दखल है?
0: हाँ बहना, हमें तो मौत भी भूल बैठी। दिन पूरे हो गए मगर मुश्किल आसान नहीं होती।
1: खुदा न करे नौला, अल्लाह जानता है ऐसी बातें करोगी तो अच्छा ना होगा। एक तुम्हारा ही तो दम है, सब छोड़ के चल दिए, एक तुम ही रह गई बहना, इतना लंबा साथ किसने दिया?
0: हाय हाय, अब तो तुम जा रही हो, तुम्हारी भला से चाहे हम तो मत किया।
1: अरे जा रही हूँ तो क्या, बकरी तक लौट
0: आने वाले भला कब लौटे हैं?
1: आए फिर वही बकवास,
0: अब तो जी कहता है माशाल्लाह फैली।
1: अरे
0: अरे, और नहीं तो क्या, मुझे तो अभी से ये घर काट खाने को दौड़े
1: हैं। अरे न जाने अरे किस घड़ी बुलावा आ जाए,
0: जाने को यासीन सुनाने वाला भी होगा के नहीं।
1: अरे क्या कहूँ,
0: कोई अलग में दो बूंद पानी भी डालेगा के नहीं?
1: वाह,
0: लोगों को तो ये भी याद नहीं रहने है, कोई नसीब हो चली इस कब्रिस्तान में रहने भी है कि नहीं। अगर आधी दम निकल जाए तो किसी को पता तो ना चलेगा मैया पानी करेगी।
1: अरे नौलास खाना,
0: और नहीं तो क्या, चंदू की बहू कहे लौंडे काम पर चले जाए, घर अकेला किस पर छोड़ कर आऊं? आए बुर्जा सर पर डाल कर मस्जिद की सीढ़ियों पे जा पड़ूंगी, और नहीं तो क्या, जाने कोई कब तक थाल सजा के लाएगा।
1: लीला नौला सब बस भी करो, खुदा का वास्ता तुम्हें।
2: तैयार हो गई मुमानी, रिश्का ले आई हूँ।
1: आए मुमानी।
2: हाँ बेटी।
1: आए क्या सारा कपड़ा ले चलोगी?
2: आए बेटी, ये हुक्का तुम्हारे मामू की निशानी है, और बेटी ये पोटली जरा संभाल के।
1: हाँ।
2: पंसूरा है।
1: हाँ। इसमें
2: बेटी एक बात कहूँ, तुम्हारा घर तो अच्छा बड़ा है ना?
1: अरे और नहीं तो क्या, दो कोठरियाँ सेंची, यहाँ से लेकर वहाँ तक दलान, अच्छा बड़ा आंगन, धनिया पुदीना बोलिया करना। आपके तो बेर भी खूब आए हैं, घर तो पिछले महीने ही भी आई थी, और क्या ढेरों पेवसी बनी थी, तुम्हें बहुत सरमारी थोड़ा ना करनी पड़ेगी, बैठे बैठे बीड़े चबाया कर।
2: अरे नहीं बेटी, मैं ऐसी गई गुजरी थोड़े ही हूँ कि बैठी बैठी बीड़े ही चबाऊ।
1: आई मुमानी, वो तो मुझे पहले ही पता है कि तुम्हें काम काज का बहुत शौक है। मुमानी, बैठे बैठे हड्डियाँ भी तो दुखने लगे हैं, जरा हाथ पांव खुले रहा करेंगे और क्या,
2: दूध तो खूब होता होगा।
1: आई ढेरों ढेरों होने हैं, बस मुमानी पास पड़ोस में जाके दे आया करेंगी, अच्छी खासी आमदनी भी हो जाया करेगी। आया बुट्टू, अभी मुमानी तैयार भी हो जाओ।
2: अरे बेटी खैरन।
1: हाँ मुमानी।
2: अरे बेटी, मुझे अकेली से तो तुम्हारे घर का इतना काम सिमटेगा नहीं।
1: आए लो, आए तो क्या नौकरा नहीं लगाओगी? कोई छोटी जमाने भर की आंखों का काजल चुला रहे, हर किसी को खबर भी ना मिले काम की नकार की मुलधाई से रनाथ की।
2: अरे नहीं बेटी, नौकरानी की भला क्या जरूरत है, हम दोनों मिलके काम निपटा लिया करेंगे।
1: अरे मुमानी, हम दोनों?
2: अरे बेटी नौलास को भी ले चलना, आखिर ये भी तो तुम्हारी अम्मा की दुपट्टा बदल बहन।

0: रुमानी क्या बच्चों की सी बातें करो तुम तो।
1: दो टूक जवाब दो खैरन।
2: आलो दो टूक जवाब की भी अच्छी रही। मुआ बालिश भर का घर वा बाल बच्चे सभी को तो रहना हुआ।
1: आए तो फिर मुझे ले जाके क्या करोगी?
2: आए मुमानी
1: बेटी मरता वक्त है, अब कहाँ जाऊंगी इस उम्र में।
2: आए लो और सुनो अभी क्या खुशी खुशी जाने को तैयार हुई? आए मुझे ले चलो मेरी चिंदा यहाँ से, मुझे जी उठ गया इस कब्रिस्तान से है। आए घड़ी भर में बदल गई।
1: आए हाँ बदल गए तो फिर
2: मैं समझ गई।
0: चोर की दाढ़ी में तिनका खैरन।
2: आई इधर मैं गई और उधर इन्होंने कान भरे। आई मुमानी हो बड़े कच्चे कानों।
1: अरे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ किसी के भरे में।

0: जानो तो।
1: अरे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, किसी के भरे में आ जाओ।
0: सब खुदा का, खाम खा मेरे साथ ठोक रही है, कसम ले लो जो मुँह से कुछ पूछी हूँ, जबान सड़ जाए।
1: हाँ हाँ खूब समझती हूँ मैं भी, सारी उम्र मुमानी दुखिया की छाती पर मूंग डली, अब बुढ़ापे में भी जान को जोक लगी है।
0: पाक परवरदिगार, अब तो तू मिट्टी अजीज कर ले, ये कान बराबर की लोटिया मुँह को आ रही है।
1: अरे तुम्हारी बला से हमारी छाती पे मूंग डली।
0: आए है अंधेर है के नहीं, और खून सफेद हो गया है मुमानी तुम्हारा तो, गारों के पीछे अपनों को टुकरा रही।
1: अरे बस बस रहने दो ये चोचले, अरे कैसा खून, तू शेखानी मैं मुगलानी, अरे तेरी मुमानी ही तो हूँ।
0: और सुनो, अरे मामू के निकाह में आई तो क्या रिश्ता ना हुआ।
1: अरे बस बस मेरा मुंह ना खुलवा, कोई ऐसी वैसी बात निकल गई मुंह से तो ततैये ही लग जाएंगे। अरे उस दिन खून ने जोश ना मारा जिस दिन मामू बेसहारा छोड़ गए, अरे तब ना पूछा मुमानी किस खेत की मूली हो।
0: अंधेर है कि नहीं, अरे मुमानी मैं तो तुम्हें इतनी दूर से लेने चली।
1: अरे लेने आई तो अपनी गरज से, अम्मा मर गई तो सोचा चलो ना मुराद मुमानी ही को ले चलूं, मुफ्त की मामा मिलेगी, ना तनख्वाह देनी पड़ेगी ना कुछ, छोटा छोटा खा के कोने में पड़ी रहेगी, फायदे का फायदा एहसान का एहसान, और कुछ नहीं बुढ़िया दूध ही बिलो लेगी, गोबर ही थाप लेगी। आए सच कहो खैरन, अपनी अम्मा मरने वाली से गोबर थपवाती थी कि नहीं।
0: लो खुदा की कसम।
1: आए खुदा की नहीं, अपने बड़े लौंडे की कसम खा के कह दे।
0: आए है बढ़िया, ये बड़े लौंडे की कसम खिलाने वाली, आए सबका करूँ ऐसी मुँह जली मुमानी को, मैं तो तुम्हें अल्लाह नाम पे ले जा रही
1: हूँ। आए बस रहने दे, जैसी खैरात तेरी वैसी मोहल्ले वालों की, वो तेरी तरह छिछोरे और थोड़े दिले तो नहीं है।
0: खून सफेद हो गया है मुमानी तुम्हारा।
1: अरे बुआ खून की मैयत कब तक बीतोगी, अरे अम्मा मर गई तो मुमानी के लिए पतली फड़कने लगी।
0: बिंदा हाथ मेरा इतना वक्त खराब करवा दिया, रात ही मुँह से फूट दिया होता कि मुझे नहीं जाना है, वो रिश्का के पैसे चढ़ गए तो अलग, खुदा की।
1: अरे बेटी खैरन तुम्हें चलने से कब इनकार करूँ हूँ।
0: अरे मुमानी तो क्या चलो हो।
1: अरे बेटी खैरन नौलाद को भी ले चलना, अब इस बुढ़ापे में इसे कहाँ छोड़ जाऊँ।
0: हाँ हाँ सारा कुनबा जोड़ के ले चलो, और जो कोई तुम्हारी टखना फोड़ने को होवे उन्हें भी बटोर लो। आए मुमानी कान खोल कर सुन लो, अरे खसम है मेरा यार रही जो सारे टब्बर को पालेगा, अरे चूल्हे में जाओ तुम और धार में जाए लौला।
1: अरे जा दूर हो मुंडी काटी।
0: करो
1: हो उमदा खान की
0: भाई, बस करो बुआ तुम्हारी तो जबान को लगा।
2: अरे अम्मू काहे को थुसाए पड़ी हो।
0: अरे बुआ आई कल कला को ये ना कह देना कि मैं नौलास की खातिर नहीं गई।
1: अरे मैं क्यों किसी के मारे बांधे से ना जाती, अपना जी चाहा ना गई।
0: हाँ भाई यहाँ किसी को क्या पड़ी है कि हाथ पकड़े, आई जाती हो तो जाओ, आई नहीं जाती हो तो ना जाओ। अच्छा सोचती होगी दुखिया हैरन, इतनी दूर से लेने दौड़ी आई और तुम ना गई,
1: और तुम्हें अकेला छोड़ जाती
0: है। अरे मैं कोई नन्नी बच्ची हूँ कि तुम छोड़ जाती, और मैं थोड़ा खोड़ा के जान दे देती। अरे क्या मैं कोई लगड़ी लूली या अपाहिज हूँ कि तुम चली जाती तो मेरा तो दम निकल जाता।
1: अब मेरे मुंह ना लगना ला।
0: अरे तुम्हारे मुंह लगे मेरी जूती। जबरीला ही सब्र सब टूटे तुम्हारे मुंह पे।
1: अरे नौनास बंदी तेरी खाट कटे, अरे आधी रात को जनाजा जावे, अरे कोई कांधा देने वाला भी ना छोड़े।
0: ले जाए तेरी सारी।
3: अरे ये हो रहा है, बंद कीजिए बकवास, शर्म नहीं आती आप लोगों को, बच्चों की तरह लड़ रही है।
0: लड़की
3: क्या आप दोनों को सिवाय एक दूसरे का भेजा चाटने के और कोई काम नहीं।
0: टांग बराबर की लौंडिया और
3: मुंह सुना है आपको संदीले से कोई लेने आया था और आप नहीं गई।
1: अरे हाँ इस नामुराद की वजह से ना गई कि अकेली रह जाएगी।
0: आई बड़ी आई मेरी चाहने वाली, आई मुझे ये कुछ ना बेची बात है, एक आँख नहीं भाए।
3: सच बताइए आपका इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कौन है।
2: हाँ बच्ची अपने पराई सब छोड़।
3: फिर आप क्या चाहती हैं? अगर आप साथ नहीं रहना चाहती तो मैं अभी अम्मा से कहकर आपको एक अलग कोठड़ी दिलवा सकती हूँ।
2: अलग
3: न साथ रहेंगी और न लड़ाई होगी।
2: नहीं नहीं, नहीं, नहीं।
3: मगर नहीं आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, आप एक दूसरे के बगैर पागल हो जाएंगी। फिर ये क्यों लड़ती है नूर?
4: इसलिए कि दुनिया से कट कर ये दोनों

0: सूतों की तरह यहाँ फेंक दी गई है। सुबह शाम रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, ये भी कोई जिंदगी है?
1: हमारे यहाँ बूढ़ों की यही दुर्गत है, खासतौर पर औरतों की। मर्द तो बाहर खून फेर लेते हैं, जिंदगी के दरमियान रहकर जिंदा रह लेते हैं। ये पर्दे वाली शरीफ बीवियां तो पिंजरे में बंद पंछी की तरह खुट खुट कर मरती हैं, और तो किसी पर बस नहीं चलता, बस एक दूसरे की चोटियां नोचती हैं।
2: हाँ बेटी, ठीक कहती हो तुम, यह बात परवरदिगार अब तो उठा ले।
0: फिर वही मौत को बुलावा, जिंदगी को पुकारिए खाला।
2: जिंदगी तो हमें भूल गई बेटी।
0: ये जिंदगी का कसूर नहीं बल्कि हमारे समाज का कसूर है, जो जिंदा इंसानों को दफन कर देता है। जिस्म का कोई हिस्सा काट कर फेंक दिया जाए तो वो गल जाता है, सड़ जाता है।
2: ठीक कहती हो बेटी, हम तो अब सड़ गल चुके हैं।
0: नहीं, आप जिंदा हैं, आप हमारी बुजुर्ग हैं, हमारा माजी है। अपने माजी को ठुकरा कर हम कैसे जी सकते हैं? अच्छा खाला जान, उठिए, मैं मोटर लाई हूँ, चलिए आप जैसे चाहे वोट दीजिए, और कुछ नहीं तो जरा सैर हो जाएगी।
3: चलो उमदा खानम, चलो।
4: हाँ चलो नौला खानम।
3: उमदा खानम, आज तुम्हारा दुपट्टा तो बहुत ही मेला चुआ हो रहा है। आई लो ये मेरा, ओढ़ लो।
4: नहीं रहने दो,
3: और भी लो।
4: आए नहीं फिर तुम क्या ओढ़ोगे?
3: मेरा तो बिल्कुल साफ है, आए पिछले जुम्मे को तो बदला है।
4: आई लो, ओढ़ लो ना, आए रहने दो, और भी लो। अब आए
3: लो, और भी दो, ये नखरे सब देखो।
4: आए लो,
3: मैं काहे को नखरे कर, तुम्हारी तो क्या समझो तुम अपने आप को।
0: अच्छा चलिए तो सही, चलिए ना।
5: तन्हाई का जहर, इसमें चुकता है कि अफसाने पर मबनी ये ड्रामा, इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा भी आपने समाप्त किया। तरतीब पेशकश अजीज कुरैशी की थी, मुआविन थे सरफराज अहमद, हिस्सा लेने वाले फनकार थे राजकुमारी मंजुमैनी, कमला कुमारी चोपड़ा, सरला नागिया, वीना प्रभाकर और माला कुमार। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। फिल्मी मौसीकी के तहत सुनिए चंद फिल्मी नगमे। आगाज मुगल आजम फिल्म की कवाली से, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में कलाम शकील बदायूनी का, मौसीकी नौशाद की।

बैजू बावरा फिल्म का ये भजन आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, मौसीकी नौशाद की थी। और लिया सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में शबाब फिल्म का नगमा, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने।

आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में सुनिए बरसात की रात फिल्म की कव्वाली, साहिर लुधियानवी की लिखी हुई, मौसीकी रोशन की।

सामिन, अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामिन, अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी अब हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव 99.9 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 99.9 किलोहर्ट्ज़, FM 11.1 मेगाहर्ट्ज़ या मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR का नचस आकाशवाणी करगिल का नजर न्यूज दिलिंग जापो आदित जून से चुजबी दिलिंग प्रचुपत भी प्रोग्राम खुरे नचाया दिदुन से नची जूना सलाम पो प्रोत्मोचन सोशिक। वास्पो फितोगे तुसुत जबीरे फेसोंसुक कसाता यार्गेसी फेसपा प्रोग्राम चिंग एन मजाद।

0: jobi nga tanga itna opportunity shik malu jo business ba samene ne yancha minuk magar do la nga tanga har chiz si score la pehla knowledge len ma zaruri do jo cha zaba nga tir loan chi fing sana do ga sok la spral chin zer odu khorang nga tanga khachir takwa ma cha khor gi apna qarzdar da ne chinu ko hukumati ka ya matlab mati bank unika de fila khwa sab ba sasna khorang main motive rosha do jo nga mujhe kya karna hai zar khan pura clear ba sana ni de score la complete knowledge len cha jo pene kyo na ghar ta kyo chin do pura takwa ba cha ode pene ga sok la spral chin misal khachigichi me nuju bazar chere yaad sasikal taluk bana ka to rang hati ke duksana ranga tankhik mana machwa hati pene mana chisomet la spral nuju chana kho hisab chik mana dandik chisomet chana ngaz zer mala pin pene u lang management bacha jo rang fila tankha jacha ode tankha me ne rang pene mispral cha hati business bilkul alag entity chosi bas stul cha ni de hisab pi karama pata shin ngari ka cham kharcha shin me apne par kitna kharcha karu me dukan se kitna kharcha karu dukan pukhri ka cham kharcha be baki nga benefit cham chos yes dun gama pata shin tisra yar nga zer na ka to khwa yang dena nu dena system chor go shadu nga cham sik benga matlab qarza lene na ka to cham jok par go shadu dun gang me man system chor go shadu aur nga nam chupe du man zaruri ho ju break even point zar shin yar nam chupe nga di qarz bu mana ada cha cha duk dekh na misal 5 saal phila tang chini around government loan 5 saal phila maximum po ya 6 saal zyada zyada tang na ka to 3 saal langa government qarza bachai khatam so se gharan pehle loose par goshad gumin duk odo cham se kam khoy gyan na ka to de sapu ko kamyab entrepreneurship yan cha chini misal 5 saal qarza ko 1 saal ka to complete bastang na ka to khana mana kamyab so de chana ode break even po cham se nimor la khong na ka to de sapu ko kamyab cha cha duk chana dyun gam me baran khwa हगोर गोशा दुख जो और हगोर लेने मैंने बिजनेस से अनुक छाचा खरा चाज मन रिसिक इन रिसिक न रंगज लेने इन इंचाना मगर जुन लर तखमा मा बा छाना का तो रा मुश्किल छाचा दुख पजो
1: छाना छि बसे रंग खमे पिया यरगेस खमे पिया दुन लयों से हिम्मत बारगोस
0: बारगोस
1: छाने एंटी डिपार्टमेंट ने रोक्स बात सो यों मी वक्तन गचु गचु सी एंटी प्लान जो जक्सियो जो गुलजार साहब जाम टिकेंटेस दिची की सना 2026 सुने जाम से एंटी प्लान जो सीन
0: कस जो गैर असल लंग दिस को ल सक्से शारीरिक टास में जो कि अति यूटी सो मैग्नेट सक्से अति दी डिपार्टमेंट पर सक्से प्रॉब्लम यो से आ डिपार्टमेंट पर छाना लेकिन यो में वक्त ने अनु कचस दी का लस बेन जो इंशाल्लाह लदा का तो दी का तो एस्टेब्लिश का तो यंग रियो छाना का तो दी का कचस लोकल एंटरप्रेन्योरशिप ला काफी रुक्स बचन जो और इसके लिए मतलब प्लान खचिक चो से कचस आगे फॉरवर्ड बसिन जो कसा
1: چھانا گلزار صاحب یہ وقت پھین سے گاتی آکاش وانی کرگیلی دی پروگرام پہ نک
0: السلام علیکم جو یار شرد جو آل انڈیا ریڈیو ٹیم شرد جو

0: स्टेशन कारगिल ट्रिसिक्लिन मा डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी साहब जुक्सर डॉक्टर साहब नता दी सुपा थों ने की ब्लड प्रेशर मापो छकन पेशेंट या ब्लड प्रेशर थोस छकन पो मते जो ला मेडिकल टर्म्स का हाइपरटेंशन जे तो हाई ब्लड प्रेशर यानी की ची बुसा इन बोमा इन छिमी लाइन दसन जवान ने नसम मन मंगो चे दी ब्लड प्रेशर रिजर्व यो नु खचिस मन जे नु खचिस मन मजा योग सालो पाचे मजा सुन जवा योग सा जरे जरे पजु मजा सुन जरे दी ब्लड प्रेशर पो मी मंगो तो सो सोनु छा बन बसे ng samiza blood pressure utirkan chana di blood pressure pu chimi in sunse in anpad in ya sirkan in business pa in ya nokri pa in mana ga tap ka mangmo yo so thon ju ati society man ma mi thonu chana di blood pressure gas man pu za chin sui ka ta chin ga physician ka nam char ko chin consultant ka nam char ko chin doctor ka nam char ko chin goman era do ti ti blood pressure thos song za chao yani hypertension in definition pu chin ga blood pressure nam thos song za chin na des
1: बिल्कुल ले इना ब्लड प्रेशर बो आता चिक चिक बाय डेफिनेशन आता चना ब्लड प्रेशर ना एक्चुअली इन बो चीन ब्लड प्रेशर बो आता ये हार्ट पे ले ब्लड पो पंप चो नो गले नींग आता हार्ट पे ले तो ब्लड पो पंप चो जाने ये वे एक प्रेशर जिंग आता रग नाले प्रेशर जिंग जनरेट चो थारल से का आता प्रेशर जिंग कोने जनरेट चो गले कौन गले ते प्रेशर बो सचिक जैसे आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोले 120 बाय 80 हो गले गेन बो आंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जशन ले योग पो आंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जशन
0: ले
1: तो गेन मा वो 120 को सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोले 120 लो सोचा नगले योग मा डायस्टोलिक बो 80 लो सोचा नगले ये वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नगले ये प्रेशर बो त्यो फिर लो सोचा नगले जैसे नगता है सा ना सा चिक प्रेशर लूस ना मता है जिसे में हर अंग ना ले हर ऑर्गन ला ते ठग है अजुक को सप्लाई बोल लूसा नो
0: ले
1: बनो ते संग काम अंग चाव समान हो जाले सोंग बसंग तिजम जिक प्रेशर बन नॉर्मली लूस ना मता है ऑर्गन संग में ठीक लूसा नो ले तब ते संग अगर थोस ते चाना ले ब्लड प्रेशर बन 120 ना जंग 100 योग को 80 संग थोस ते चाना ले ते ने ते वे मता है जिसमें का नुकसान ले बाले मता हर ऑर्गन ने का प्रेशर मां को चाना नुकसान ले बाले तंग मता है अजुक शिग ऑन ले कमिटी ऑन चन का जेएनसी जशन ले ज्वाइंट नेशनल कमिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन सोंग बसंग त्यो मा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नोगले ते वे गता लगभग चार चार साल इस थिंग नंगा ये लुको गाइडलाइंस को चेंज अचन कि कजु आंगता मने स्ट्रेंज जते पेशेंट नोले चिकचिक का ब्लड प्रेशर बो 140 नेता से 159 ले अगर अच्छा ना लेकिन माँ उले सोम बसाम ते वो आ गए स्टेज वन से चल लेकिन माँ उले अगर योग माँ वो 90 से 99 जाना तो स्टेज वन है ना नो वाले अगर 160 ने या 160 वर्डो या 160 सम मंगपो छाना या योग माँ वो 100 वर्डो या 100 सम मंगपो छाना ले तेने ते वो आ गए स्टेज टू हाइपरटेंशन दर्शन ले सोम बसाम यू एज पर डेफिनेशन वो जेएनसी गाइडलाइन हिसाब है डेफिनेशन को यू नो गाले कि ब्लड प्रेशर वो गुमा ब्लड प्रेशर वो चेक चो जाने ले एटलीस्ट 5 मिनट पेशेंट नो रेस्ट चो जाने तेस थिंग ने अगर ब्लड प्रेशर नेन जाने ले फर्स्ट ब्लड प्रेशर वो गए रीडिंग वो मिथे चस ले तेस ना तेना आयु चाल ले चीच मैं पेशेंट जी गुमात मैं डॉक्टर कहूं ना को गल लाता ची परेशान सो सान आ गया ले टेंशन सो सान आयु आत को मैं चीज रे डॉक्टर रे ची मेजर देते सो मसा ते वे जस्ट ब्लड प्रेशर सा ची गिन ना चा दिया ले सो बस हम ते फे गए फर्स्ट रीडिंग वो अगर मता माने ना डिस्कार्ड चुना तो मता फिर तेज थिंग ने गता यंग ब्लड प्रेशर वो रिपीट चुचेस ले लंपों इस टोटल में लंपों सुन चुचेस ने गले पहला वो खरंग वो फर्स्ट वो डिस्कार्ड चुचेस ले तेज थिंग ने सेकंड बना थर्ड ब्लड रीडिंग वो ब्लड प्रेशर रीडिंग में निचे ले बिल्कुल बिल्कुल सेकंड चुचेस ने मैं यंग लगभग यंतु पुंगता यंग दो मिनट सा मार दिखता गैप कॉन्शियस करना अगर नियन ना ब्लड प्रेशर मापे गुना ले नतोक ना जारे ना फितोक संकाले लंपो सुम
0: जरा खर्जी जचाओ मसलन ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी यानी डॉक्टर बहुत मोटा छचाओ तेलिन सिल मापो जाना मार मापो जाना ब्राज मापो जाना सुस्पा ना हेल्दी डाइट पुची होशिन
1: हेल्दी डाइट ना छमे सा इंपोर्टेंट नोले चिचिक तंगा ताई छे कंजम्पशन बोले
0: कसल
1: मता मैं आमतौर मता सोसाइटी ना तुक्षी पहले मता नमकीन चावल है मम पे म्यू ने कंज्यूम चोर गया ले सो मसल लास्ट टाइम मता ये लद्दाख से ना कुछ स्टडीज में तो ये देखा गया लेकिन मता 10 ग्राम 12 ग्राम से ऊपर छा ले लेते हैं ले तो जम छा मता कंज्यूम चोर ना मता बॉडी फैटिग मान ले चेजना छा एक तो ब्लड प्रेशर तो मता खतरा ही ना है नुगले मगर छा पर हम वो कार्सिनोजन है नुगले तो एक कैंसर काजिंग एजेंट जान नुगले तो फिर छा मग वो इमिनेंट चल
0: सब एरेज बना जलता है दमो ब्लड प्रेशर ही दिया नुको लाज मापो जैसे कि मित योग छा जखन अति मीमा जखन तो शॉक बहुत हो शुक्रिया थैंक यू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों

0: भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Pala the Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ए बुद्धू, नई कार जीतने का मौका?
2: वाव, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
2: क्या?
4: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो, स्कैमर्स साथी तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: ओ,
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
1: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं करवाते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
1: कूल रहो।

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thoki kain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

दसन सपायन तेज पुर्गी गलज आजर रिंगेन न्यूज पी मीडिया में का त्यो आकाशवाणी कर गेलिन वक्सपो तुसो टुगने फेसों सु कसता प्रोग्राम यन मजा सगेत पॉनिफिया प्रोग्राम पुचिखन पुन मोहम्मद याहिया प्रोग्राम पुरी

0: या दे न्यान खानु ला दंगा ती मैसेज दियो जु कि खाक ता जा मन अर्गेल बिक दुजु या रंग खाक ता म चोक सम से देना कदबा ना चा हमेशा जबत कि गाचा न म कांटेक्ट बना दिख जरे कि क्या गाचा जंतन के गाचा चा जबन म मु जियर ग्रुप ही गाचा परेशानी म मु छते रा जने का तो नेगेटिव ग्रुप ही दे बना चा मन आज से चा जबन आती दन ने मी कम दुख ओ नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव जकन बिल्कुल कम दुख या गाती कारगिल अनुक चाना दो चल बगा चा जसी मन परेशानी म म छेंदु जु ओदे ग्रुप चलवा बाकी ग्रुप न आता खुदा ने शजा गाती दे मन काफी होत दे मन कोते न से बात जु गाचा यो गाचा जेर से हमेशा बाकी आते फोन चिक बाजे चोर गोस्पेल का फोन बाजिक बिचारा मन नम जेर बचिक लबेक सिंच यो
1: यो अक्षी जुनी यरे जारे गाता छोर बचे देरस लेगिन मिमास मा मो क्रक जी तंग से इंजरे हजु दे चाम जी गरा फन केक थोए या मिमा सुन चाम जी देक न थत पवत बचे या यदि रुगुआ नुक चंग कमजोरी जेरे दो तुक्षियो मत होता
0: बिल्कुल मैं जो दहा सुख पंगास 59.5 सीन है दरे जुलाई नुक नियं टाइम शुरू सो सिंजु जुलाई नुंगा 60.5 नि छचिंजु लेकिन मला दिख सख तंग से चंग स्मोथ केक जेरे गा चंग मछोर जु जसे मैं खची से नुक सख तंग से गा चक्कर हो तर गा कमजोरी हो इवेंट की गा सख तंग से वाला आधा घंटे के क्रिकेट से छत लेकिन मैं दिन देख कमजोरी क्यों मचा तो मैं तो मैंने कहा ना अर्गल विक्स सख तंग से गा लेक हां सिर्फ थोड़ा बहुत देने का जश ऐसा छकन जसों की हल्का मोटिक तो शिक्षा छोर ने बता जश हल्के जनारा छोर बाबा की इन नमें तो या तो दोंगा दी ची के ची साब ची का सों सीन हल्का ना जश मोटा रिक सो मार दोंगा छोर में तो कच्ची सीन तो क्या की मोटा छाल दूर देने का रे जश सम की दिसो इन ऐसा से बाकी अरे जित की क्रक तंग से जब ना मीन ने ची रिएक्शन नहीं होता जरिशु काफी मीन खो बिचारा लेते परेशानी का फल मना मना अति काम गएको खुर बजारी बेन्दु छु खची जना मना खची मना तेज देरा बेन्दु खची जना मना अति तेसो मिया यन्दु कि कार लोरगोस बुटिक देर गब जना मना टीएम इन्दु लेकिन को आतेस कार खेज जरे बसे खुदा थती भरे बसे अति आखरती माता अर गेलबे छौ जरे गातेस बाना दे गाता चंग धोल जा नजर खौ एक दिन छामिन दु पजुया सुस कॉल बना चाहे अति कारगिल पेन चाहे आउट ऑफ स्टेट पेन चाहे मुस्लिम चाहे नॉन मुस्लिम सिन मना कॉल ची गाते मना लबेक जो सोचा गाते तैयार बसता मच बाकी देसो स्मोट के चांत मोमेंट जो आता देसो
1: अक्षी जो इसलिए कि नफिस बाबा से मुल्त कैसे का कनी जाओ चाहे मुल ना दरी गाती बमु है जो गाता लेकिन ना कम थोए गाने संगा क्रक्ची तंग सिंदर गाता छोर बंग कम छे यारी नजर यंदु तो कतु यों दो की गाती बमु निसंग गा दुन लायों से हांगास क्रक तंग माजर खन का तो यों दो या चंग खुआ परेशानी यों दो अक्षी
0: मैं जो मैम गाती गाचा नंबो जुड़ाई सो से गाती बमो डोनर गाती अच्छे से मो मने ममो गाता नंबो कि डोनर दिस गाचा नंबो दुनिया में बो हमेशा मने नंबो दुख से डोनेट बखन यारा जने का तो गाती मने मिंग फेस गाचे चिका तो मने गाती देने को हाजी अस्पे तो कोसर मैम कारी हाजी को इन मने टाइम टू टाइम मने नंबर घोस ना मने लबेग से बात आजू कन लेकिन मने मजस किंगा पारे चिंग को जिंदुंगा मने हल्का छेंदो आराम छेंदो जिंदिया खिखा पे तंग मना वो सो ना आराम छिंदु टाइम चाची को ना से बात ना कॉल बात को टाइम ना नोट बस सुन आती डोनर सुस्ता ना तो नोट बेन छा जरा जने तो नाचे से सिस्टम चेंज से पूरा जक्सोत मंथली हिसाब का देखो ना उदयन ना सलता से दे सब का को हमेशा फोन बात की एरी टाइम सो सु यरा सुक्यो जरे सोने नाती हकीमा लियो जु चाची ना कॉइन नाची डोनर चिक दुनिया नाती मेडिकल बमो का तो खो यो दे डोनर बना उस्तानी की सुन छो दिया लेकिन कभी महसूस की खोए करने का चस ब्लड टेस्ट किया अपने गाचा दिस और नोट केक सोच रहे बिल्कुल मन मजे जो गांव में जा चिंदु की गाचा मना अड़गला चिंदु खराब टेस्ट किया अपने मन देना आदत छा रहे मना दासी होने जो चिंदु या बाकी कौन नुकसान चीज रहे बन दांच पर मन महसूस हो आता
1: कसा निदा चा मना दरी गाता अगर का तो बुमो निस्क शक्ता ना या बुसा निस्क शक्ता ना खुआ गचुक आदत का तुम यो मर गोशिंग आता जर बसर दो अगर का तो सिगरेट ठू मरना या खुआ गचुक कसनी बीमारी का तो ना दोन लाख शक्ता मैं मामे जरे है जो
0: का मैं तादी हूँ आता सो सिगरेट ही ने चांग मिंदु जुआ सिगरेट ही ने सिगरेट ठू मर मामोस का मजा ते तो चांग जरे मिंदु लेकिन दे सोपो नत दियो खान देख रहा पता मैंने मिंदु बाकी दगा ती दे शुगर यू मत खचिया दो तंग मतलब मतंग ना चांग मिंदु मतंग ना चांग मिंदु या तंग ना यहाँ चिंसिन दो क्या बाकी जैसे चाव में तो बाकी डोनर लतीस फिर एक चिंगाती दो इनकी हमेशा डोनेट भाई होता ना कोई पूरा टेस्ट मर मामे ही शादी राज ना चार पांच टेस्ट शादी दे नुवाती दे हेपेटाइटिस बी जरे एड्स जरे यहाँ दे राज ना शुगर दोन मन ना खचिक बात दे टेस्ट जो ठीक होते मैंने मैंने कोई ब्लड पर चढ़ाई बचा मैंने पेशा ला दोन का मस्त आत खचिक ता जिक से दुगन दुख किंगा इन द बीमारी का तो मेता से दुगन दुख कि टेस्ट बाजिक से दुख खचिक मैंने बिल्कुल किंगा ना चंग नर्त सोमनाथ सिंह

0: ça,
1: ça
0: ouais, je
1: c'est
0: vois.
1: dingue d'exiler. Ça, je compte pas hez bazen. Mais quand c'est une con, puis les yon, yon se ton ta qui croit, pas ta chète qui croit, dit, mais Marie, d'où j'irai. Si tout ta mal croit, de plus au cas, je te gourmand, il dit, moi, j'ai reçu. T'es gamin, moi, je m'en chie, mette pas, croit, de j'ai reçu. Tiens, là, dit, toi, odé, n'a zachi, de Paris, ben, de Narzogot Kanji, odon, odon, la série, mais ta chète, bakine, moi, yang, tchang, ben, Marie, quand le secret, le cœur, ton gadon, tchang, mais nous,
0: Marchis.
1: dans la ligne, je casse.
0: Ah, marchis kaka. Dana to anga ti hospitali ka inna ka to blood being zere nga ta dana nuk kaka.
1: Kasa.
0: Time time ka sun se nga ti ga su chi za gar khak chi tang nuk sam na ka to ko gar sun se kho khak ta mar ko sindu gya yen ta nge mugo to contact ba chin to chi mal na marchis.
1: Kasa na ti WhatsApp group che ho ji agar ga chana mo contact bana ka to khona chi WhatsApp group che da blood donor association jin chi pura registered ba sa ta ja su chu. Dega ti contact number ko 9469002008 WhatsApp number pin ji. देखा कॉल देखा मैसेज था ना ठीक ना देखो ग्रुप पे ऐड बेट अगर 2 मिनट में का तो खोज ना चाहे ना कांटेक्ट माचा का तो डायरेक्ट कुंतिस भोग सब में का तो ना ती पुराना अस्ट्रल देखा ना ती ओल्ड ब्लड बैंक होत देन ऊपर स्टाफ को यू मजू बराबर ध्यान सो सो खोज डोनेट बना ठीक चिन दे में देखा तो ती डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का 3rd फ्लोर पे नोगा ती सोमा लद्दाख ब्लड इधर सॉरी ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बेस हो चू ती कमरा ली मेरा लास्ट आया लोग को दया सोच कांटेक्ट बस कुछ दया ना ताना डिग बाकी सिर्फ खो आदि चीज होती कि कोस ब्लड डोनेट बस रिक्या अपना गवर्नमेंट तरफ ना रिफ्रेशमेंट अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट आ जा सोच दया ना वाती 1 पाव बादाम जा सोच 1 पाव किशमिश जा सोच और बादाम शेक जा सोच रिक्याला रिफ्रेशमेंट खो आ जा सोच ध्यान बाकी कांटे ताना चाह में जो अचानक वो कांटेक्ट सोच ताना बाकी कौन डायरेक्ट सोच से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का सोच कांटेक्ट ताना दोनों का अवेलेबल हो जो हमेशा
0: बख्शीस काका नी दरिंग अति का अच्छी नमी क्यों से निका कॉम्बुलर तांजु या काका फोन क्यों से कौन तो अक्षरता मचुक अगर का तो कौन महीने अंग नुटना 1 बार तांना या अंग पहला तांसो या अंग 10 साल पे तांसो जरना का तो दो लचंग यंची ना या महीने अंग तांम यंचा दुगा चीज
1: कैसा शुद्ध इसको ला दूं इनकी गताया सब वो 3 महीने था मौसम जो 3 महीने हिसाब से मेरे 3 महीने गेप जा सकता चाहे जो साले 4 बार यार खा तमाय चिन हर 3 महीने था मच क्योंकि खाप खुरा ने यारा जने का तो बिल्कुल दिन 1 पॉइंट यार स्थान का तुम्हारा यारा 4-5 दिन यारी 1 पॉइंट बराबर वापस हो चिन सुखाप वो यारा दरगाह सिर्फ और जंग सेल चो चिन व्हाइट सेल जिन चिखाप ने वो 10 सेल पोगाती दरे मिया का तो गाते ब्लड चिकता ना का तो खा मेन ब्लड देने यो मिंदुक जू जरूरत पर सेल ही चेंदुक चाहे दे सेल पुलदान मजा शिक 2-3 महीना 2.5 महीना छात से कम दे फिर डॉक्टर ने इसको ऐसा बोला 3 महीने गैप जान दो जो 3 महीने गैप ना ये ना खा तमाय चा बाकी गति जिसके अब साल लांग ब्लड काफी गति ब्लड बयान वजह से हो मजू सिर्फ इमरजेंसी दूं छात तेरा दे क्रिटिकल केस शो ना का तो दोनों गति दे पेशेंट वर्जन खचे सीए हों दो खोआ देना बचना थेरेपी बचना देते फ्रेश ब्लड घोस पाजू दोनों गति द प्रेग्नेंट लेडी खो द डिलीवरी इच्छा चना खो सिर्फ फ्रेश ब्लड तमर को स्पत देते लगा चा डोनर खैर बर को स्पत बाकी इस वजह ब्लड स्वर को संदो मना अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लगा थी ब्लड में यूं मजू खो जाए ना तमर सिर्फ फ्रेश को स्पत सुरात खो लगा चा कांटेक्ट बस दे सोशल तमर बाकी जा सोशल हर 3 महीने नो खराब चिकता ना डिक्चिंग जो 1 पॉइंट
0: डिस्ट्रिक्ट
1: अस्पताल कारगिल इस कोलोब्रेशन एंड उनका चेस जग पत जो है ननिंग लोग इस चीज का चेस कौन है वो कोलोब्रेशन एंड दी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाई बासे लेकिन का चेस इंडिविजुअल तान लोग पैरा जने देने काफी खर्चा चेंदुक चेन का चेस सोशल आदि से पेनिक ने योद में देगा चा चेस मेरे सुअ का चेस फार्ट सोत ना का तो तामा मिंदु गया चेस वहाँ चेस गरीब गोरबा मदद दे बागा चेस सोशल नित्रा बेचारा गरीब गोरबा खची का अस्पताल आसमान रिंग बिरखाने होंदुक खची सिन्हा ने रिफेर बना खोंग जाशिक्चांग इंदाची हो मविंदुक चाना अच्छा देगा ते जवान खची की जा पहले रे अच्छा एसोसिएशन ताना ना कतो अच्छा दुख हुआ दसमानी वर्णी ने अनुक मदद बाद अच्छी एसोसिएशन पर ज्यादा बुलाट डोनर इस देखना अता केम चिता मा अते सुखा फान चित हो जना फान खोस ता मविंदुक चाना देखना अते इंडिविजुअल मोहरम में अच्छे ता मत केम मोहरम में अच्छे पूरा केम ता मा जाए 2 दिन केम जा पर अच्छे लदा बुलाट डोनर एसोसिएशन तरफ ना और भरगा अति कोलैबोरेशन विद दी देना सैल्यूट 22 नमन कोलैबोरेशन बस ता मजू बाकी ना वो ब्लड डोनर देखो ना गाचस इंडिविजुअल लद्दाख ब्लड टी एसोसिएशन की तरफ ना गाचस दान सुपा मल्ला माखों से जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल इन कोलैबोरेशन है ना गाचस मल्ला क्यों जो लोग सुन चिन
0: बख्शीस का इंशाल्लाह इंतला सुननी एंड आज तो

0: नौ महीने छेद गंती आमा निश्चित बजू गंता जैसे खामा लाशी गयो ना का तो
1: फ्रूंग इन दुजे
0: फ्रूंग इन दुगना डायरेक्ट मोबाइल पे से चुक चुक कोको मेलन चिकतों या राइम चिकतों जो तांसे ना जो का तांसे ना कोरत पूरा लास बच्चा जो या फ्रूंग ना आराम सो या तको ना वैसे डॉक्टर ने इस नजर बजू एहतियात बुजर बतिया दो साल सब बिल्कुल स्क्रीन टाइम मिस्तान चुक जाए स्क्रीन मना मस्तान चा लेकिन गंता में जुदो दरे मना फोन उत्पन्न फोन पुतां से ना गंता छा दिया लाशिक बा सिंगंता आराम चिंदु फ्रू ना मंगो आराम सोंसम से लेकिन ओदो मन फ्रू दिमाग को कोई मीक पूरा असर असर से
1: चिन हाजु दे करो ना का
0: सा छोरी छोरी छेनो मन फ्रू गंतस दारे थों जुंग अंती मन खामा अंतस थों मदिया जैसे सुनसे फ्री गयो स्कूल नयो से या स्कूल द मछा फ्री गयो ना मन मिछा जैसे को खामा दु पर ना 2 साल अंडर 3 साल फ्री यो ना खो मन जाच मोबाइल का दुगन दुग जु खचिक जाच एडिक्ट सों से हों दुगया छन पुला चिक चिक सु यों से छे सु यों है जिजान चिक जाची ना में ना खो मन चंग गरज म्यों मजुया चंग पता मिचा चा जब खो दो फोन का जाच एडिक्ट सों से
1: हों
0: दुगया तद एडिक्ट सों से हों स्पीकर खोई जाच मिगी का खोई जाच असर छे खोई दिमाग खो सोशल मतलब खोई गैदरिंग चे खो दुपा मना दिन द छछ में दुखसनी हो छे जैसे गाता मोबाइल बगैर यंग अंती सोसाइटीज पे रेता ने अंती गैलास पे रेक तंग नियत ना का तो देख खो मना दुखसनी हो छे में जैसे खो दिमाग है ओदो सोशल की मुझे जाके अभी फोन देखना है गंता दरंगास दरे गेम चिक ऑन बस यों स्पिंदा ओदे ची सों ची मा सों जरे
1: दो दिमाग पूरा
0: क्यूरियोसिटी सों सों ची ने फोन ही देन दे
1: बख्शीश
0: तो खो अदो चामा बिल्कुल असर सुन दिमागी मीगी सग असर सुन सुन जो है तो दो नुकसान था उदय मांगमो तो दे फिर आता पेरेंट्स सुन ला सबसे ज्यादा उदय अंगती पेरेंट्स सुनी मतलब दिन दयोत पे पेरेंट्स सुन तार गुशी फोन गचो फोन गचो इस्तेमाल बचिन जरे मतलब चाम चिक टाइम खो ता से जक चिन खो टाइम चिक सेट बचा मार खची ता से जग नु जो दो मन बिल्कुल छो आदत छ
1: खची फ्रु दु चिक थों दु जुंग ता की जान जामेत मोबाइल ता से मेने लाख पे
0: मोबाइल ता से मेने जान मिजा छ त दो जान जो से ग्याव न खो पता मियो म जो की जान जो से ता मेन जरे खो पता मियो मत चस खो फोन ने दिया छ तारे मतलब जैसी मी बच्चा या पेरेंट्स उन्हें इसमें सबसे ज्यादा दिन दू
1: रोल था
0: रोल दू पेरेंट सुनसे ना अगर मोबाइल एहतियात बचुक से टाइम चिक सेट बचुक से तंग न का तो मना दिन बढ़िया ही नहीं अगर टाइम मतंग मखों या चो मना तंग से जागना का तो जो फ्रून पूरा जिक से छा चिंज हुआ फ्रू मना चंग दिन लुशा में नो दें
1: ओ ना जो इन आता पेरेंट्स ने दी कहा जो खाक पकी मोद जरे दरें आता आ थों मत पिन जूस नंग आती फ्रून नंग आ मना मिखुक्स पत पिन बाहर ला गेम्स चा चिंज दुसे हा जो किंतु नंग यों आता में जबरगोस पत पिन दक्षा सी फ्रून लगे सी पिस्ते का पोलोस चा सों जबरगोसेट छा नंग आता आ पेरेंट्स ने संग फ्रून ला मोबाइल पो मतंग मा पिस्ते गेम्स रिक दो चोक्स रिक
0: बिल्कुल बार गुशी मन आया मन खंगमा जग पी दरे दरे दी जमाने का मन जग पर कोशिश में बचा दिया बिंदु दे मन घंता अमान सों से घंटी लास्ट पुटिक साइकोलॉजिकल देना चाहना देर ना उससे निकालने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इससे बेहतर है पहले ही
1: पहले
0: चांस है चमेन
1: मुना
0: का तो या दे उसको या जितना हो सके सपोर्ट संग देना भी कोशिश बार कोशिश मैंने गेम ची खामा क्यों से जागना जैसे दरंग इंडोर गेम्स आयो मैं जो आउटडोर गेम्स हो उसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शिरकत कराने की हमें मतलब कोशिश
1: बख्शीश नमो सलेमा यारिस मनर देमो मोस छाना दिया सोस लंगा तंग दक्षा दांग दिंग सोशल मीडिया वो था जुंगा थी पुरुन इस मना सुनते ना इन ना कतो दी इंस्टा जरे व्हाट्सएप जरे फेसबुक जरे मना दून गांग में का मना किमो रंगे तुस्पो दी का फुटे था जो दून का नंगा ते पुरुन ला चीची नुकसान रिके रंग यों मत होन बख्शीश
0: दू सोशल मीडिया के माना सबसे ज्यादा असर आदि जो या सोशल मीडिया यहाँ नेगेटिव दिन दायो चिन पॉजिटिव दिन दायो तो फ्रू निश्चित अच्छा फ्रू आदि आज ची पता जो तजू नेगेटिव इंजर पॉजिटिव इंजर हाँ रील स्क्रॉल बेन चाचिन देख नेगेटिव दिन दिखाऊं चिन उदय असर आप खो चिन क्या ना खो अगर दिन दचे खो मुके तो जैसे फोन के बगैर वो बैठा हुआ है तो दो माना दिया पे बेन दू जुर यार ना दिया नेगेटिव जैसे रील चीज ना उदय पे बचा खुंती का उदो दिन दबेन दुख
1: आजमाई
0: बेन दुख पाया था स्टंट उस बचा मन स्टंट बसे खची प्रिंस गचुक बेंदु जो तो दे मना नुकसान हो दिया रील सुन दे नॉन स्क्रॉल बेंदु दो यहाँ पेरेंट्स ने तेन दुख चा जुल ताचा नी प्रिंस अगर फोन खुरी होना मतलब चिल तेन दुख ची मतलब ताम इंदुक जरे नो अंत स्नाह जग चा जो तो दो बहुत सारे मनफी असरात होते हैं
1: उसके। बख्शी जो है इस मनर

0: di mobile kana ma ta fan ke chi yo dia noksan chi yo zere chana yares la juk pika nga ti program ngan kana chana mon la yari chok na chi prin chi sale disco la bakshis
1: जु बख्शी जु ये दिया मैसेज जु खास कर अमाउंट ला यो जु अमाउंट अटाउन ला जितना हो सके पूरा जंजूस ला जु चाहे बना नस जैसे तेन युत की जैसे खचिक अमाउंट यो दु जु स्ट्रिक यो दु मना मोबाइल मतान चुक पा देना फ्रून मुंह ना का तो अकना अपी यो से लांस यो दु जु नो आ नी फोन पुखुर जरे या अपो यो दु या अता यो दु यो से नी फोन पुखुर जरे तो जितना हो सके अमान आ गया कॉर्पोरेट बच्चा कॉपरेट बच्चा जो कि परवा में बाकी खुश जिंदगी ना दिन दसों दे
0: जिंदगी
1: गलत असरात ना मासूम छाना पूरा जंजूस ला अमान ला दिया मैसेज कि जितना हो सके अपने बच्चे को फोन से दूर रखें फोन पर तंग ना यहाँ तक टाइम चिक सेट बचा
0: बच्चा
1: मतलब तंग ना यार टाइम चिक तंग ड्यूल तो जरे मतलब नजर जगचा उसके ऊपर नजर रखना है तेरस फोन पर तंग से ना यार जी ना छू तंग मचे या बहला स्कूल चे या ना नीलाश अच्छे फ्रूज दी का देखते रहना चाहिए आपकी नजर उस पर होना चाहिए
0: बख्शीश नमो सलामा यंग रेस्पेक्टेड चियारा और जूत हेरी मुजरत की यार सेरी रिंचन वक्स सुनाना वक्स फिंग से आकाशवाणी कारगिल स्टूडियंस के होते बुला डोनेस बच्चा स्पोर्ट्स हम जिस हासन दिस को ला यंग दी मोबाइल कनांगा तांगा चुक फन खेनी यो दियांगा चुक नुकसान यो दिस को ला यार स्पेस पा बसे मौजू या सलाम अलैकुम
1: या जो अस्सलाम अलैकुम शुक्रिया आपका
0: दक्षत सखपा यंतेस नमो सलामे कना Tisuik ngayon niyot pin, irtiang mayot, yan tesang ditiso ni kana fan keleno. Ambo ding achinomo ni program po tamaton. Inchala, nanmelus na yang yong mi, achinomo ni program ni strolika, yan tang natuktuk. Deman pong atang saka izin siya zebaza, diyaju, khodanar, sangmani, fagreng.
2: दक्षण सपायंतेस प्रोग्राम ये नियुक्त पिन अचिनोमोनी फिरा प्रोग्राम फोचिकन पॉइंट में जहरा बानो में प्रोग्राम प्रोड्यूसर पॉइंट में गुलजार हुसैन मीडिया में का दिव आकाशवाणी करगिल ने वक्त पर तो सुध लुन्ना मेरे निशु सका चंदुक कसता पुर्गी खबरों लास नावाजात

Çoğu goyotçen gombe glusenzere eserin डेप्युटी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार इस पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल करितना गवर्नमेंट हाई स्कूल तसे सिक्स कोर बसे शे सिला सुन स्मे सोखान दोनों स्कूल उने ग्रल से रुनिल तालुक्स बस खोज दे वक्त शे सबखान न शे दिन खान नर गेला बसे रान रा एवा सुन स्पाल बर्गो सुजरेन स्टाफ उन ला बायोमेट्रिक हाजिरी उन सख्तान पोस्ट चोजरे खास कोन तांस दे बना हाई स्कूल तसा डीसीस अरसांदा कुर्तन पोस्ट चोजरेन स्कूल कैंपस पुल लखमो बे मीना स्टंग फ्रुचुक पी मीना फ्रुन सक अस्ट्रेयर गो सुजरेन असरेन गोम मिंजे बम उछान ला चंपे ट्रेनिंग पो घर गया बस पिस दे अनुक मशीन उन सास गोसे तांस दिवस तक तकरीब पिया भरु मिंजी काउंसलर एडवोकेट खादिम हुसैन इस फेस पर डोंट फेस होते का खक लेने बम ला मुबारक बा तान गमियुल यार के सिफ में बम उछान लख चैंपियन लास खान सक मलियन क्यों मजरे ऐसे रेन तकरीब पिया आरसीटी एसबीआईएल दोना एलआरएलएम पे ऑफिसर ने संखालन से मुकररीन ने बम ला मलदुख सिर चश्मानी ग्रल सिर ला लास के वक्त सुने के ना फन के लेन में मीना जो अबसिन गवे के दि मशीन ने सर्टिफिकेट उन तब खान बम उन सगस खक खुरन ला और यूजेस व्हाइट हाउस इस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस फ्रांस ला योम हफ्ते जी सेवन सरबराह कॉन्फ्रेंस पे वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एम यूली लीडर उन सक नहीं बो ग्रब श्रिक मालियानो खोचा इंजर है सरसेत अमरीकी ग्रल सिर खा खोर सिग नजम से दिस पर तेरा माशी यर्गिया से सप्लाई निजाम शोस्मा जहानत सरमाया कारीस कोला लखथुत ने म्यूल स्ट्रोन लुक्स पो यतखन जिक्स मोनिका यतखन स्नमान जक पे अर्थियां मान अब्बास इन सोचा ना वर्षो ती दोनों मन सोचे थे कि सुनाते इदाराओं ने महकमे वजीर जितेन राम मांझी दोनों बिहारी वजीर लारा सम्राट चौधरी अस्किया बिहारी गया जिले अनुक खजर सराय प्यंग सोमा टेक्नोलॉजी मार्कस पेश में अर्दाओ शखचाइन दि मार्कस पुष्प करोड़ गन और दुंची रे निकर सोचा सिंजरन दी तोनपु जुनूबी बिहार ने मगध खेत एमएसएमई एको निजाम पु खेचन सोचा इंजर है जरसेत एमएसएमई वजारत नजम से दि टेक्नोलॉजी मार्कस पु बिहार सरकार छोना तांसखन एकर निशी प्लाट पे का ग्रल सिर भचा इंजर है और सर बसों का सता खबर इंसान से का नमजा स्कोर लदरिंग करगिलो अंगिमा नमजा थासलो जिया दरिंग इमि छति थी पु करगिलो नि शुर सक्सम मेशारी अर्गु डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थी पुर क्या दशारिया और दुन डिग्री सेल्सियस तक्स नबस लदरिंग इमि छति थी पु चुब दुन डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थी पु गा इशारिया इफी डिग्री सेल्सियस और तक्स नबस द्रास लदरिंग इमि छति थी पु नि शुर सक्सिक डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थी पु सुम इशारिया अखा डिग्री सेल्सियस और तक्स नबस पदम दरिंग इमि छति थी पु चुरगु इशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थी पु त्रुक इशारिया और दुन डिग्री सेल्सियस तक्स नबस दियाना चोला छलेस को दरिंग इमि छति थी पु नि शुर सक्सिक इशारिया गा डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थी पु याद इशारिया चिक डिग्री सेल्सियस तक्स नबस दिन निन दरसक पे पुरगी खबर नाइजिन शस दबस यशु खुदा नर सामानी फकरिया

0: 4242।
1: ও 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: स्टडीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: वजीर अजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन दो तरफा बातचीत कर रहे हैं, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान मयारी हिफ्ज़ान सेहत को और ज्यादा कम खर्च और ज्यादा लोगों तक बहम पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि भारत को दुनिया के हिफ्ज़ान सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वजीर अजम ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर के खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ाएगी। एसकेएससी श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कन्क्लेव आज इख्तिताम पजीर हो गया। कन्क्लेव के पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कश्मीरी पंडित बरादरी से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सनअती तालीमी और सकाफती इदारे कायम करें ताकि उनकी बेमिसाल सकाफत और तारीख महफूज हो सके। एलजी ने यहां से बेदखल किए गए लोगों की वापसी को न सिर्फ खुशायन करार दिया बल्कि इसे एक फतह से भी ताबीर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बेमिसाल कुर्बानी और हुबुल वतनी हमेशा कौम को मुतासिर करती रहेगी। एलजी ने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमलावरों का डटकर मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना पेश करके जम्मू कश्मीर के दिफा में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि आबपाशी ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने मौसर और बरवक्त पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुतलिक अफसरान को हिदायत दी कि वो पानी के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं ताकि काश्त के मौसम में कोई भी किसान मुश्किलात का सामना न करे। वजीर रफियाबाद बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान आबपाशी के बुनियादी ढांचे के काम का जायजा ले रहे थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने जेर जमीन पानी की सतह में मुसलसल कमी और बारिशों के मुतवक्का रुझान पर तश्वीश का इजहार करते हुए तमाम नई तामीर होने वाली सरकारी इमारतों में बारिश का पानी जमा करने का बुनियादी ढांचा लाजमी तौर नस्ब कराने की जरूरत उजागर की है। वजीर मौसूफ ने पानी के इंतजाम के तरीकों में तब्दीली और उस हुक्मनामे पर अमल दरामद करने की ताकीद की है। वो जम्मू में जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ गर्मी के मौसम की जरूरियात से निपटने के लिए शुरू किए गए इकदाम का जायजा ले रहे थे। पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने आज श्रीनगर में आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन इनाकात के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हसास मुकामात पर क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात करने की हिदायत दी। डीजीपी ने अमन में रखना डालने वाले अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखने की भी हिदायत दी। इस दौरान एसएसपी अनंतनाग अशोक अमूद नागपुरे ने पहलगाम का दौरा करके यात्रा रूट्स पर सलामती इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की। दरियासना गांधरबल और अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के अहतमाम से मॉक ड्रिल मुनक्कद की गई। इस बीच डीजीपी ने मुहर्रमुल हराम और खीर भवानी मेले के सिलसिले में भी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आयुष की वजारत ने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए योगा के बैन अल-अक़वामी दिन के हवाले से कायम की गई यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइव योगा स्ट्रीम के 4,35,831 व्यूअर्स की तस्दीक की है। वजारत 21 जून को मनाए जा रहे बैन अल-अक़वामी योगा डे के हवाले से तैयारियां कर रही हैं और ये यूट्यूब चैनल कायम करना तैयारियों की एक पहल है। चीफ प्रिंसिपल सेंसस अफसर व डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने डेटा जमा करने के दौरान दुरुस्ती के आला तरीन मैार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इनुमेरेटर्स और सुपरवाइजर्स को हिदायत दी कि वो हर अंदराज सही तौर पर

भी ये दौरा अहम है। भारत इनोवेट्स 2026 का बुनियादी मकसद भारतीय स्टार्टअप्स को आलमी सरमायाकारों, वेंचर कैपिटल फंड्स और सनती इदारों से जोड़ना है। अगर भारतीय नौजवान कारोबारी अफराद को यूरोपीय मंडियों तक बेहतर रसाई हासिल होती है तो इससे न सिर्फ सरमायाकारी में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के नए मौका भी पैदा होंगे। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत तहकीक और कारोबारी जिद्दत को कौमी तरक्की

जय हिंद फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में महबूबा फिल्म से गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आर डी बर्मन। पहले ये वक्फा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूँ।
0: तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहाँ, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर।
1: देखो ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया?
0: नहीं।
1: आओ मेरे साथ। ये वही राज दरबार है। कुछ भी तो नहीं बदला। आओ मेरे साथ। ये वही जगह है और तुम गौरी के साथ।

लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा सिर्फ तुम फिल्म से अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाजों में सुनते हैं। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम चावन ने।

लीजिए दोस्तों, अगला नगमा शीशनाग फिल्म से सुनते हैं, जिसे गाया है अनुराधा पोटवाल ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पहले ये वक्फा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स

0: भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: ₹140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: Trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: तो भारत का परिप्रेक्ष्य वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के

कार्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे।

0: आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर, खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बेरोट और दीगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोजा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की कयादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अखदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।

0: करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के इख्तराई को निजाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वजीर आजम मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इतलाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
5: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयार

0: जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शोर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिले एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवण पंढरपुर पर वाके तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैखो ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेफ एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत